0: और सभी लोग अपने अपने बात रखे और बोले कि आप ये वोट चोरी के बारे में और जो अनेश कुमार आज इतनी बड़ी गलती किए हैं कि उनके ऑफिस से ही सब चीज़ें चोरी हो रही है, इसीलिए हमने डिमांड किया है कि फिर से एक बार ईवीएम को निकाल दो और बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराया जाए। और दूसरा कि ये वोट चोरी जहाँ जहाँ हो गए वो सबूत उन्होंने मांगा है, वो सबूत हम लोग तैयार कर रहे हैं और सबूत हम दे देंगे। उसके अलावा जो कुछ उनको देना है वो सभी इंफॉर्मेशन हम देंगे। और
1: राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में इंडी गठबंधन के नेता जो पिछले कई दिनों से अनर्गल निराधार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये कहना कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है, ये दर्शाता है कि जो अभी तक राहुल गांधी देश की हर संस्था के बारे में, हर संवैधानिक संस्था को अपनी राजनीति का शिकार बनाने का दुष्चक्र रच रहे हैं, उन्होंने अब आज ऐसा प्रतीत होता है कि सारी सीमाएं पार कर दी। परंतु जिस समय राहुल गांधी ये बोल रहे थे, उनके साथ खड़े हुए नेताओं की भाव भंगिमा और उनके चेहरे के भाव ये साफ परिलक्षित कर रहे थे कि जो बोला जा रहा है संभवतः सच से उसका कोई सरोकार नहीं है।
2: Alright, shifting our focus now to the controversy coming out of JNU. Jawaharlal Nehru University has sacked Congress MP and Professor Angomcha Bimol Akoyjam after an internal inquiry found him guilty of sexual harassment. The university's internal committee upheld 9 allegations, including at least 11 students involving sexual suggestive interactions, unwelcomed physical contact and inappropriate behavior. Now, the panel said the evidence pointed at a recurring pattern of conduct inconsistent with professional boundaries in a teacher-student relationship. Now, the dismissal has taken immediate effect following the committee's recommendation for major punishment. The BJP has hit out at the Congress for not taking action against its MP. Smriti Irani questioned why the Congress ecosystem that endorsed Rahul Gandhi's cry to smash patriarchy remains silent. The BJP Mahila Morcha is also planning a nationwide protest against the MP. The sacked MP, though, has called the entire exercise a witch hunt, saying there is no proof of the allegations that are made against him. Let's listen to his exact response after this.
3: Reminding to the rest of the country, POS Act is not a Chinese Act passed by the National People's Congress of Republic of China. If the whether the JNU or anybody is applying this law or not, rest of the country should it, and all those allegations of 6-4 marks, show me that. Either in their report or anywhere, show me that. Then only then you will know how this witch hunt has been going on. It's a blessing. I thank my Ivudo Pakhangba for helping me to expose this witch hunt. There's nothing like it if it is true.
2: All right, we're slipping into a short break. More news and updates on the other side. Keep watching NDTV.
4: Duniya ek nayi dehliz par anishchit unsulji बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।
5: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah. NDTV stands completely engaged with Karnataka.
6: High rate, check the audio.
5: Let's do it.
7: Breaking stories, we're jumping straight into it.
5: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
8: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed.
2: Welcome back. back. You're watching NDTV. Big news coming in. Russian oil

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म, इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन NDTV वर्ल्ड समिट 2026 में NDTV के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। NDTV वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
3: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
0: Sharpest global voices decode a world between orders. Dr. Swarnim Wagle, General David Petraeus, Swami Sarvapriyananda, Mike Walsh, Nicholas Butts, at the NDTV World Summit, a world between orders, 22nd and 23rd October, only on NDTV. After a smashing start, the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions.

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
0: द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस, डीकोड अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स। Dr. Swarnim Wagle, General David Petraeus, Swami Sarvapriyananda, Mike Walsh, Nicholas Butts, and the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, only on NDTV. After a smashing start, the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
2: Welcome to the second edition of the NDTV World India Japan Summit.
3: Deep localization. What?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

एक नई दहलीज पर अनिश्चित अनसुलझी बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

एक नई दहलीज पर अनिश्चित अनसुलझी बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: सबका राजा आकर मसाला।
3: दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित, अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।

0: election commissioner. While in Lucknow, BJP workers are on road. They are protesting against Congress party, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi. You can see these women, they are lady workers of Bharatiya Janata Party, and they are protesting near Congress office in Lucknow. I'll show you some footages that police put a barricade there so that they can stop these women workers of Bharatiya Janata Party. And they are claiming that Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi and Congress party assaulted the cops during protest. I'll talk to some of the ladies. What is their demand?
1: जी हम लोग बनारस से आए हैं. मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काशी क्षेत्र से आयोजक गीता सिंह नाम है मेरा.
0: प्रोटेस्ट मांग क्या?
1: मांग है कि जो एक पुरुष महिला के साथ अभद्र व्यवहार किए हैं आप लोग सभी को मालूम है, वो माफी मांगे. जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे.
0: तक यहाँ रहेंगे
2: भाई साहब? हम लोग तो है ही हैं और क्या रहेंगे. देख लीजिए उनके पीछे की दशा क्या हो गई है. हम नारी
0: कांग्रेस दफ्तर पे कुछ महिलाएं लाठी लेके खड़ी हैं कि आप लोग पहुंचेंगे तो लाठी से स्वागत हो.
2: अरे वो करना होगा भाई साहब अपने सम्मान के लिए, तो वो भी करना है अपने बचाव के लिए. जी
3: नामी यही है लाठी चलाना और मार खिलवाना.
2: हम रानी लक्ष्मी बाई है, अगर कहीं अपमान हो रहा है तो उसका जवाब जरूर देंगे, उसमें हम लोग नहीं चुकेंगे. हम
3: जो शुरुआत नहीं करेंगे,
4: लोकतंत्र से चलेगा और इस तरह की अराजकता फैलाने वालों को कभी माफ नहीं किया जाएगा. देश की जनता और नारी शक्ति आधी आबादी कभी माफ नहीं करेगी ऐसे लोगों को.
0: यू कैन सी दीज वुमन प्रोटेस्टर्स, दे आर एसोसिएटेड विद द भारतीय जनता पार्टी एंड दे आर डिमांडिंग अपोलॉजी फ्रॉम कांग्रेस एज वेल एज राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी. एंड दे आर क्लेमिंग दैट सम कांग्रेस वर्कर्स इंक्लूडिंग राहुल गांधी दे असॉल्टेड, दे मिसबिहेव विद द पुलिसमैन हु वर वर्किंग ऑन स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली. सो दीज लेडी वर्कर्स एसोसिएटेड विद भारतीय जनता पार्टी दे आर क्लेमिंग दैट दे वॉन्ट अपोलॉजी फ्रॉम राहुल गांधी. आई एम विद बीजेपी वर्कर. मैम आप लोगों की डिमांड क्या है?
1: जी पहली डिमांड तो यह है कि राहुल गांधी और खास करके प्रियंका गांधी इन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए. जिस तरीके के लगातार ये लोग दुर्प्रचार कर रहे हैं, कांस्टेबल के साथ बदतमीजी, वो भी महिला कांस्टेबल, उसको इतना इनअप्रोप्रिएट टच करना, क्या ये सही है? क्योंकि 70 साल इन्होंने जो वर्दी को समझा है ना, वर्दी को कठपुतली समझ के रखा था और वही वर्दी ये आज भी समझ रहे हैं और इस तरीके के गंदे व्यवहार कर रहे हैं. उसके बाद इन्हें SIR के बारे में इतना बरगला रहा है, इतना बरगला रहा है, ये है वो है. अच्छा जब बंगाल में जीते तो SIR गलत, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी तो SIR सही. ये क्या बकवास लगा के रखी और राजनीति को इतना गंदा करने की आपको क्या जरूरत है? आपको माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी.
0: सो दे आर अगेन डिमांडिंग फॉर अपोलॉजी फ्रॉम राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी. एंड आई विल शो यू सम फुटेजेस दैट देयर इज अ पोस्टर व्हिच वाज टॉर्न अवे बाय द बीजेपी वर्कर्स एंड नाउ पुलिस डिटेन्ड सम ऑफ द बीजेपी वर्कर्स एंड रिक्वेस्टेड रेस्ट ऑफ देम टू रिटर्न बैक. एंड आई विल शो यू फुटेजेस दैट दीज वुमन लेडीज दे द वुमन वर्कर्स दे आर रिटर्निंग बैक to their places after protest near Congress office in Lucknow.
5: Thanks, Ranveer, for getting us that report. So the BJP raising temperatures in Lucknow against the Congress MP from Manipur, who has been sacked by the Jawaharlal Nehru University, but the Congress has not taken any action against him. He's still a part of the Congress party, still a sitting Lok Sabha MP from Manipur, from the Congress party as well. Will the Congress engage on this? My guess is quite unlikely. We'll be back on the story in just a bit. But remember that the Indian Air Force is showcasing its air power at Asia's biggest multilateral joint air force exercise, Tarang Shakti, in Jodhpur as we speak. There have been stunning pictures coming in all day. Raksha Mantri, Defense Minister Rajnath Singh is there today as well. And these are the images that he is being greeted by. Enjoy these pictures. Back with much more.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित अनसुलझी बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन NDTV वर्ल्ड समिट 2026 में NDTV के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। NDTV वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
3: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
4: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरनमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
5: एक परिवार, अटूट भरोसा।

0: भी एक प्लेन में उनको अटक कर दिया ना, अच्छा नहीं किया ना वो।
1: क्या आपकी भावना है, क्योंकि प्रोटेस्ट का पहले से ही बताया गया था फिर भी अरेस्ट किया गया?
0: नहीं, मुझे तो मालूम ही था एक ना एक दिन उसको अटक करने वाले, मुझे पता ही था अटक करने वाले बोल के।
1: लेकिन इस तरह से प्लेन में पहली बार किसी को अरेस्ट किया गया है, इसकी जरूरत थी सरकार को?
0: नहीं नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं थी, इतना उसने क्या करा था। आज राहुल गांधी 4-5 दिन से, फिर उसको अटक नहीं कर दिए ना उन्होंने, कितने दिन से वहाँ पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इतना कुछ करे ऐसे प्लेन में जाके अटक करने का, इतना क्या करा था उसने।
1: एक माँ का दिल है, क्योंकि आपको भी पता है, आप बहुत दिनों से चिंता जता रही है कि अभिजीत के साथ बार बार ऐसा हो रहा है, तो अब ये अरेस्ट किया है, क्या आपका मतलब जब पता चला कि पुलिस ने अरेस्ट किया, क्या भावना है?
0: अभी भावना क्या है, बुरा लग रहा है ना अटक करा है
1: तो ये हमारे साथ अभिजीत दीपके के पिताजी है, क्या कहेंगे, आपको ये कब पता चला और क्या रिएक्शन थी?
2: मुझे अभी अभी पता चला, तुम लोग जो बाहर आए थे तो मुझे पता चला कि कभी अरेस्ट हुआ है, फिर मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था तो प्लेन में उसको अरेस्ट किया, मुझे पता चला।
1: क्या रिएक्शन थी, क्योंकि ऐसे प्लेन में अरेस्ट किया गया?
2: नहीं नहीं, वो प्लेन में भारत के इतिहास में पहली घटना है कि एक स्टूडेंट को प्लेन में अरेस्ट कर दिया, ना रेपिस्ट को अरेस्ट कर सकते हैं, ना टेररिस्ट को अरेस्ट कर सकते हैं, ना जो भारत का जो पैसा है वो प्रदेश में लेके जाते भागते उनको अरेस्ट कर नहीं कर सकते, ये उनके दोस्त ही है, जो उनको सज्जन दिखता है वो उनको अरेस्ट करते हैं।
1: आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी अभिजीत से?
2: 7-8 दिन पहले जब यहाँ पे था वो, उसी टाइम पे डिनर करते समय बात हुई थी।
1: आपको पहले से चिंता थी पुलिस अरेस्ट कर सकती है?
2: नहीं, मुझे पता था कि वो पुलिस कभी ना कभी तो भी अरेस्ट करने वाले।
1: अभी आपका अगला कदम क्या रहेगा, आप दिल्ली जाएंगे मिलने के लिए या अभी तो अनशन होगा पता नहीं?
2: नहीं, देखते हो जैसा सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड है, दिल्ली जाना है या नहीं जाना है।
3: I am just taking on record that I was being detained. There are 10 police officers who have come. I was eating puri bhaji at the place. Ye hai sare officers. Ye sare cops hain. 10 cops aaye the mujhe uthane. I asked them why I am being detained. To unhone bola law and order situation. Ye sare cops hain. And law and order situation, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। I asked them law and order कैसा situation, उन्होंने बोला interrogation करवाना है।
4: NDTV's Ishika is at the Chhatrasal Stadium in Delhi, which is one of the detention centers where some of the leaders are being kept. She sent us this report.
5: The entire Delhi has today been fortified, and we have seen that how the Delhi police personnel and the paramilitary force have been present at every nook and corner, and they are continuously detaining protesters who are trying to reach towards Jantar Mantar. Now, where are these protesters being taken to? Well, we are currently present outside Chhatrasal Stadium. This is the Chhatrasal Stadium, and you'll see behind me there is in fact paramilitary forces. In fact, there are Delhi police officials also that are present here, traffic police also, in fact, trying to clear this route, because this is one of the designated places where the detained protesters are being brought here. There are some who have already been brought here, many who are in fact detained from Connaught Place, were trying to gather at the Connaught Place. Some of them have been brought here. Many, in fact, are on the way. So you see, this is the kind of, in fact, security arrangement that has been done in place here at the Chhatrasal Stadium. We are not being allowed to go inside. And, you'll see that at every gate here, the paramilitary forces have been deployed. More so, you know, what you'll be seeing here, that the traffic police is also present. They are trying to clear the route continuously so that when the buses full of protesters who have been detained are brought here, they can smoothly be, in fact, you know, be allowed inside here.
4: Ishika is live with me outside the Chhatrasal Stadium in Delhi. Ishika, which leaders have been detained at Chhatrasal Stadium, or is it just protesters?
6: question so far, you know, there are only protesters who have brought in police buses, and they have been brought here at the Chhatrapal Stadium. And we are currently showing you, these are the visuals that you'll be seeing on the screen. There are CISF, in fact, who has been deployed. In fact, you know, Delhi police officials, the paramilitary forces, all have been deployed here. And just a while ago, we saw a bus full of protesters who, in fact, have been detained from around the Connaught Place were brought here. So slowly and slowly, the police is, in fact, bringing all these detained protesters here. No such BJP leader has been brought at the Chhatrapal Stadium, because remember, this is only one of the designated detention centers. And the police has said that since the permission was not given, all those students, or rather youth who are trying to come here and trying to reach to the Jantar Mantar, they will be detained and they will be brought here. Over to you.
4: Okay, Shikha, thanks very much for that. Remember, Abhijit Dibke, we are hearing, has been taken to a detention center in Gurugram. Ashutosh Ranka, somewhere in Delhi. The third is somewhere in Dwarka right now. Here you've got a map on your screen that shows you where each of these leaders actually is at this point of time. Where exactly these detentions are happening is not clear just now, but we'll get you those details in a short while from now. So Saurav Das, Abhijit Dibke and Ashutosh Ranka have been detained, in addition to several other second-rung members of the CJP. And at this point of time, a statement has been issued by the CJP saying, with or without the leaders, protests will continue in different parts of the country. That's likely to take place a little later today. But the restrictions in Delhi are confined to a 4-kilometer diameter in central Delhi, with some curbs and restrictions in other areas as well, including some one-way roads, etc. Another big detention that took place earlier today is YouTuber Dhruv Rathi, who was taken in by the police. He was part of the CJP's Jantar Mantar Chalo call. Rathi, who lives in Germany and is a German national, arrived in India a few days ago. Last night, he had posted this video from outside the India gate calling for action against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. Sources tell NDTV, Dhruv Rathi was detained from his residence in Gurugram, which is Delhi's Haryana suburb. CJP has issued a statement condemning Rathi's detention and demanded his immediate and unconditional release. Well, the politics over the detention of Dibke, Ranka, Das and Dhruv Rathi has erupted into a full-fledged political slugfest, as you can imagine. The CJP protest has triggered a political slanging match, with the detention of protesters drawing sharp reactions across party lines. BJP President Nitin Nabin has pointed a finger at the opposition, saying Rahul Gandhi is misleading youth and attempting to destabilize the country. Meanwhile, the opposition has slammed the restrictions and curbs in Delhi.
7: आज पूरी तरह से ये कौन लोग हैं जिनको जनता ने नकार दिया, चाहे वो राहुल गांधी के इंडी गठबंधन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो और उनका सीजेपी हो। जनता ने जब इनको नकार दिया, लोकतंत्र ने इनको सजा दी, तो उस सजा को पचाने के, उससे सीखने के बजाय आपने इस देश को अस्थिर करने का मंसूबा बना दिया। और मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रयास कहीं ना कहीं आपके राजनीतिक उद्देश्य के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पे आप कर रहे हैं, और देश जो पूरी तरह से विकास में आगे बढ़ रहा है, लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत के विकास को, भारत की तरक्की को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं।
8: अराजकता निर्माण करने की, अराजकता फैलाने की कोशिश है साजिश से प्रतिपक्ष की, और मैं तो इनके रवैये से हैरान हूं। गैरों पे कर्म, अपनों पे सितम। हमारे देश में अराजकता फैले, क्योंकि वैसे जीत नहीं सकते। सत्ता की प्राप्ति के लिए इतने नीचे गिरेंगे हमारे उद्यमियों का आगे बढ़ना रास नहीं आता। राहुल जी विदेशियों का समर्थन करते हैं, यही कांग्रेस का प्रतिपक्ष का चरित्र रह गया है।
9: के युवा हैं ये, इनको कोई नहीं रोक सकता प्रभु। जो लोग ऐसे भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, कितनी ट्रेनें कोई रोक लेगा, कितनी कनेक्टिविटी कोई रोक लेगा, कितनी सड़कों को कोई जाम कर देगा। भारत के युवा हैं, दुनिया को रास्ता दिखाने की क्षमता रखते हैं और पीढ़ियों ने ये किया है, तो ऐसे में कोई उन्हें नहीं रोक सकता।
10: उत्पात मचाने का प्रयास दिल्ली में हो रहा है, अब व्यवस्था बनाने के लिए जनता को समस्या होगा। सरकार पहले से इसलिए व्यवस्था किया है कि जनता कोई वहां जा करके वो समस्या में ना पड़े, उनकी प्रॉब्लम ना हो और दिल्ली वासियों की भी समस्या ना हो, और बाहर से अवांछित लोगों को आकर के वहाँ एक कानून व्यवस्था का समस्या हो जाए, ऐसा ना हो, इसलिए सरकार मेजर के रूप में सारी व्यवस्था की है। पुलिस प्रशासन चुस्त है, किसी को आंदोलन करने में मना ही नहीं है। देश में लोकतंत्र है, कोई भी आंदोलन के माध्यम से अपना बात कर सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था बिगाड़ने की जो प्रयास हो रही है उसको रोकना चाहिए।
11: सरकार अपना काम कर सकती है और सरकार को करना भी चाहिए। अब चूंकि आप क्या है, अभी तो हम तो सुबह उठे हैं आपके माध्यम से, लोकतांत्रिक ढंग से सबको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कह करते हैं कि बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी जांच के, किसी के खिलाफ इस्तीफा मांगना हमको लगता गलत। पहले जांच की मांग करनी चाहिए, जांच में जो दोषी हो फिर दोष सिद्ध हो जाए तब उस पर कार्रवाई के लिए काम होना चाहिए, ये हमारा कहने का मतलब।
12: नरेंद्र मोदी वोट चोरी के खिलाफ उठी हुई आवाजों को दबा रहे हैं, पूरे देश में दबा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तानाशाही बहुत दिन नहीं चलने वाली है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ इस देश का नौजवान सड़क पे है और पूरा देश नौजवानों के साथ है।
13: ऑन बिहाफ ऑफ आवर पार्टी द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आई स्ट्रांगली कंडम द रेप्रेसिव मेजर्स दैट दिल्ली पुलिस इज अनलीशिंग। We never saw such thing in national capital Delhi. The CJP and other left youth student organizations have declared they will go for a protest. What is the demand? The chief election commissioner should step down or he must be removed. And it is a demand in a democracy, and people have the right to express their opposition. And people have their right to demand certain things.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: यकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज। दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित, अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
2: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
3: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित अनसुलझी बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।
1: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
3: यू नो डिजाइन्स कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोज,
4: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
5: एक परिवार अटूट भरोसा।
6: Five hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
7: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
8: Higher ed, check the audio.
6: Let's do it.
9: Breaking stories, we're jumping straight into it.
6: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
10: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
6: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
11: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
10: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
6: The line of control, Shivarur, NDTV.
0: The sharpest global

0: Thanks for staying with NDTV's rolling coverage on a big Saturday protest in the national capital. I'm going to get you all the updates from NDTV's big reporting team on the ground in Delhi. I'm Shiv Arur. Let's get you straight to the headlines. CJP leaders Abhijit Dibke, Saurav Das, Ashutosh Ranka detained from Delhi airport this morning. YouTuber Dhruv Rathi detained from his Gurugram home. CJP condemns the detentions. Politics over the CJP dharna. Congress, Aam Aadmi Party, DMK, CPM slam the detention. Demand CJP leadership's release. Opposition goes all guns blazing against the BJP. BJP storms the streets of UP against Congress MP Akoy Jam, who was sacked from Jawaharlal Nehru University over a pattern of sexual harassment of young female students. BJP demands an apology from Rahul and Priyanka Gandhi. US President Trump's double standards on Russian oil. 15 months after threatening the entire world for buying Russian oil, he signs a deal with Putin for America to buy Russian oil. Elon Musk hits out at Reliance's Mukesh Ambani amidst the Starlink row, accuses him of exploiting the people of India and blocking Starlink from entering India's internet market. And in protest season, politics is erupting in Tamil Nadu today over the SIR controversy. The DMK has now taken a direct attack on Rahul Gandhi, who arrived in Chennai just a short while ago. A. Saravanan, lead spokesperson of the DMK, has called Rahul Gandhi unscrupulous Rahul Gandhi. He says when Rahul Gandhi addresses the students in Tamil Nadu today, that's part of the Chhatron Ki Goon series, what is he going to say? Through SIR, they stole elections in all the states and except Kerala and Tamil Nadu. Saravanan of the DMK says, is it because they run the government in Kerala and to have two ministers in Tamil Nadu? How will he inspire confidence among students when he is indulging in selective outrage? Does he think the students here will not decipher his deception? So unscrupulous Rahul Gandhi is how the DMK has labelled the leader of the Congress party, who is in Chennai today for a Chhatron Ki Goonj episode, and he will also be having lunch with Chief Minister Vijay. Vijay Gopal Muralidharan, my colleague, NDTV's reporter on the ground in Chennai, is with me live. A big attack by the DMK here on Rahul Gandhi personally. And let's face it, they have a point. The entire selective outrage over SIR has gone unanswered from the Congress's side, Vijay. They've been outraging about SIR in every other place except in Tamil Nadu and Kerala.
1: Sure, that's right. It's a scathing attack from DMK spokesperson on X platform. But the important perspective is Rahul Gandhi is in Chennai to meet as we speak. We're just outside Chief Minister C. Joseph Vijay's residence. Rahul Gandhi went inside. He's having a meeting with Chief Minister C. Joseph Vijay. It's a very important meeting also. So amid this, now Saravanan also had criticized Congress' stand over SIR issue. The important point is very recently Rahul Gandhi along with Congress leaders had a meeting with President Mumu and submitted a four-point memorandum where they had mentioned about the concern about the state elections starting from Madhya Pradesh, Delhi and West Bengal, but not Tamil Nadu and Kerala. Here only DMK spokesperson had questioned why Rahul Gandhi had skipped Kerala and Tamil Nadu, because in Kerala, Congress is ruling government, and in Tamil Nadu, they have two ministers. They are sharing governance with TVK. This is the why Saravanan has called Rahul Gandhi as a dishonest person. We have to wait how Congress is going to respond, but we spoke with Congress leaders also. They gave clarification saying that wherever they have suspicions regarding SIR process, they are going to raise issue. As far as Tamil Nadu, they don't have any suspicious thing. This is the clarification on X platform also Congress leaders have shared. We have to wait how Congress leaders also going to react over
0: this. Just stay with me, Vijay. A. Saravanan is with me live on this broadcast. Saravanan, welcome. You've taken a direct attack on Rahul Gandhi. You've called this selective outrage and a deception, Saravanan.
2: I am. Today, the CJP are protesting here in the state of Tamil Nadu, in Chennai. They were arrested. And what is Mr. Rahul Gandhi's statement? Is the Congress party against it? When Mr. Rahul Gandhi was protesting in Delhi, these people said, oh, you should support Rahul Gandhi. You should not have narrow political considerations. You should think of the larger common good. Now, why they are not saying anything about this thing? The TVK government has had a crackdown on the police on the protesters, and the RMPs were present there and ensured that those people were arrested, released. The persons arrested were released. And in the representation given to the president, they have mentioned every other state except the state of Tamil Nadu and Kerala. In the state of Tamil Nadu, more than 7 crore voters have been deleted. And we have been consistently complained about this FIR process. We filed a case in the Supreme Court. But still, they say, oh, Mr. Vijay is the chief minister here. So let us not do anything about this. Let us not speak. Then they will lose those two ministers for the sake of two ministers. Mr. Rahul Gandhi is adopting a hypocritical approach.
0: And also Saravanan, the Congress party has put out a statement condemning the detentions of protesters here in Delhi, whereas the Congress coalition government in Tamil Nadu is busy detaining protesters there also.
2: Absolutely. You are right. That is what I'm saying. Congress party is a hypocritical party. Mr. Rahul Gandhi is duplicitous. How can we trust him? He is not even able to take a consistent stand. That's what I'm saying. For the sake of two ministers, if you are going to make compromise on your ideology, on your purpose, what is the message you are sending across? How will the people trust you?
0: Indeed. Saravanan, thank you for speaking to NDTV on this eruption, this political eruption that's taken place in Tamil Nadu. Remember that Vijay and Rahul Gandhi will be meeting later today. Rahul Gandhi has a scheduled Chhatro Ki Goonj in Chennai. Many people will wonder whether this was scheduled deliberately so that Rahul Gandhi and the Congress could be out of Delhi, so there was no overlap with the CJP, which many believe the Congress is actually competing with. But there are many different contradictions and hypocrisies at play. Congress condemning the detentions taking place in Delhi, but a Congress government detaining anti-SIR protesters in Chennai. Well, that is how politics rolls. Well, a protest planned, this is the big story of the day, of course. A protest planned in the national capital has triggered a huge face-off now, with the CJP alleging a massive citywide crackdown on its Delhi Chalo March. And these allegations are true because we can see it happen. Three CJP leaders, the senior most founder, Abhijit Dibke, along with his partners Saurav Das and Ashutosh Ranka, were detained just after landing in Delhi from Mumbai this morning. They were reportedly taken to separate locations in Delhi, Gurugram and Dwarka. Dibke alleges the authorities accuses them of using dictatorial tactics and saying that the Delhi police boarded his flight to detain him and other party leaders, and has accused the government of stifling what was meant to be a peaceful protest, while CJP spokesperson Saurav Das has alleged that the state is at war with its citizens. BJP MP Sambit Patra is holding a press conference. Let's listen in.
3: Jantar Mantar mein jo ho raha hai, TV mein jo dikh raha hai, और कुछ सोशल मीडिया के हैंडल में जंतर मंतर को दिखाया जा रहा है, वो भारत की कहानी नहीं है। भारत शांत है, भारत सुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है, मगर दिल्ली के एक कोने में कुछ अराजक तत्व जिस प्रकार से अराजकता कर रहे हैं, वह कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, मगर आज मैं आपको कह सकता हूं कि आज द एनार्किस्ट्स हैव फेल्ड। जो अराजक तत्वों का फ्लॉप शो हम देख रहे हैं, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। प्रयास था, ये कोशिश थी कि भारत को बंधक बनाया जाए, राजधानी को बंधक बनाया जाए, कोशिश थी कि यहां आगजनी हो, कोशिश थी कि यहां मार पिटाई हो, कोशिश थी कि यहां पर सड़कों पर लड़ाई हो, मगर आज भीड़ तंत्र पर लोकतंत्र की जीत हुई है। जिस प्रकार लोकतंत्र ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया है और जिस प्रकार से सारा विषय कंट्रोल में है, एक बात मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि द अनार्किस्ट्स हैव फेल्ड और उनका ये फ्लॉप शो नहीं चलने वाला है। कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, ये केवल आज की घटना नहीं है, कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बंद बुलाया था, कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट था, आज कुछ दूसरे तत्वों ने प्रोटेस्ट किया है, फिर 12 तारीख को एक प्रोटेस्ट बुलाया गया है। तो एक कालखंड में किस प्रकार से भारत में स्थितियों को बिगाड़ा जाए उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, मगर उसके पीछे के नियत को भी समझिए। देयर इज एनार्की विद इन द एनार्किस्ट्स ऑल्सो, अराजक तत्वों के अंदर भी अराजकता है। किसको ये क्रेडिट मिले? तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में गुत्थम गुत्थी चल रही है। आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का ठेका क्या कांग्रेस पार्टी ने ले रखा है? ठेका तो हमने भी ले रखा है, तो हमारा डेट अलग होगा। तो कांग्रेस बोल रही है, अच्छा जेब में कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति, तथा कथित प्रति, अब उसके अंदर क्या है हमने नहीं देखा है, तथा कथित प्रति हम लेके घूमेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का दावा ये आम आदमी पार्टी करेगी? ये नहीं चलेगा, हमारा एक अलग दिन होगा। तो इस प्रकार एनार्किज्म विद इन द एनार्किस्ट यह भी चल रहा है। कल आप देखिए, राष्ट्रपति भवन गए थे कुछ राजनेता, राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलने के पश्चात राहुल गांधी जी का बयान एक नालायक नेता के बयान के समान है। मैं बहुत सोच समझ के ये शब्द, मुझे भी कुंठा हो रही है बोलते हुए, तकलीफ हो रही है। आई एम सिटिंग ऑन अ वेरी हाई पेडेस्टल, ही इज द एलओपी ऑफ द कंट्री, मगर जब मैं कहता हूं एक नालायक नेता, इसलिए कहता हूं कि चलिए आपने प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया, झूठ बोला, वो पूरा देश देख रहा। आपने जिस प्रकार से भारत के संवैधानिक पदों के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, पूरा भारत सुन रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को सड़क की लड़ाई में घसीटने का प्रयास किया गया, मगर एक नालायक नेता ने राष्ट्रपति महोदया को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश की है। द एनार्किस्ट राहुल गांधी ट्राइड टू पुल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द एनार्किज्म विच ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कंडक्ट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया, ये कहते हुए कि हम कल कुछ वोट चोरी के विषय को लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गए थे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी मान गई कि हम जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। अब देखिए, बेसिक प्रोटोकॉल भी राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है कि आप कोई मेमोरेंडम लेके जाते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स द मेमोरेंडम, ये बेसिक प्रोटोकॉल है भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का, इसीलिए तो भारत का लोकतंत्र विराट है। मगर आपने कहा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसी सांस में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कुछ एविडेंस है तो वो भी दीजिए। क्यों एविडेंस क्यों नहीं लेके गए थे? एविडेंस होगा तभी तो लेके जाएंगे। जब इलेक्शन कमीशन आपको बुलाती है कि हैकाथॉन के लिए आइए, आइए आप हैकाथॉन करिए हमारे साथ और आप ईवीएम को टेम्पर कर दीजिए, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम ईवीएम में सुधार लाएंगे, तो नदारत गायब। जब प्रेसिडेंट मैडम कहती है कि एविडेंस है तो दिखा दीजिए, बाद में एविडेंस देंगे, अगर बाद में एविडेंस देंगे तो आप गए क्यों थे? तो आप प्रेसिडेंट के पास गए क्यों थे बिना एविडेंस के? मतलब इतने दिनों से, मैं तो कहूंगा लगभग एक साल हो गया वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी करते हुए, उसका एविडेंस आपके जेब में रहना चाहिए था, क्यों नहीं था आपके जेब में? क्यों गए थे राष्ट्रपति भवन बिना एविडेंस लेके? और बाहर आके नालायक नेता कहता है कि राष्ट्रपति महोदया मान गई कि हम जो कह रहे हैं। आप सोचिए, यह व्यक्ति लायक है क्या देश के प्रधानमंत्री या एक उच्च पद में बैठने के? He himself proved that he is not responsible enough to occupy a high position in India. कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक बहुत बड़ा और गंभीर, एक बहुत सशक्त विषय रखा था और वो विषय था तीन राज्यों में जो बाई इलेक्शन उपचुनाव हुए उसके नतीजे। असम में उपचुनाव हुआ, नौगांव में हम लोकसभा का चुनाव जीते हैं, कांग्रेस को कितने वोट आए हैं वो तो कल बताया गया, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया। वेस्ट बंगाल में दो असेंबली के चुनाव हुए, लोकसभा का हुआ, असम में असेंबली के चुनाव वेस्ट बंगाल में हुए। नंदीग्राम हो या रेजी नगर हो, दोनों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और पुडुचेरी में एनडीए की जीत हुई। चार सीट के नतीजे कल आए, चारों सीट पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत हुई। इनके जो वकील गए थे कांग्रेस पार्टी के और ये तथाकथित एनार्किस्ट के जो वकील कल सुप्रीम कोर्ट गए थे कि हमें फैसिलिटी चाहिए मी लॉर्ड, टॉयलेट की फैसिलिटी चाहिए, वहां पर डॉक्टर की फैसिलिटी चाहिए जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको सारे फैसिलिटी प्रोटेस्ट साइट पे चाहिए, प्रोटेस्ट साइट पे आपको डॉक्टर भी चाहिए, आपको टॉयलेट भी चाहिए। आपके कहने पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी कर ली, मगर जब ये चारों नतीजे निकल कर आ रहे थे उस समय टॉयलेट मांगने के बदले आपको कहना चाहिए था मी लॉर्ड हमारे वोट चोरी हो गए हैं हमें बचाइए, क्यों नहीं कहा? अरे टॉयलेट मांगने गए थे, वोट चोरी का न्याय तो मांग लेते, आपके जेब में सबूत थे तो वो सबूत दिखा देते कि लॉर्डशिप देखिए ये सबूत है वोट चोरी हो गई बंगाल में, वोट चोरी हो गए नागांव में, गौरव गोगोई हमारा इतना बड़ा नेता उसके साथ धोखा हो गया, आसाम में वोट चोरी हो गई और बीजेपी जीत गई, पुडुचेरी में वोट चोरी हो गई और एनडीए जीत गया, वहां जाके शौचालय मांगेंगे और वह शौचालय भी हमारी सरकार देगी क्योंकि आपकी सरकार तो शौचालय भी नहीं दे रही थी, और वोट चोरी के विषय में सुप्रीम कोर्ट के सामने आप नहीं बोल सकते क्योंकि तथ्य नहीं है। कल ये जो महानुभाव हैं अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और केजरीवाल, ये तीनों निकल कर आए थे, वो ट्वीट ट्वीट और एक्स में सब केला किया था इन्होंने। ये अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया कि रेजी नगर में जो असेंबली का काउंटिंग हो रहा है उसमें बूथ नंबर 109 में भारी गड़बड़ी हो गई है, वहां वोट चोरी हो गई। कैसे चोरी हो गई वोट? वहां कुल वोट जो है वो 772 है और बीजेपी को 772 में से 909 वोट मिल गया। रजिस्टर्ड वोटर्ड 772, बीजेपी वोट्स रिपोर्टेडली सिक्योर्ड 909। तो ये कितना बड़ा घपला हो गया बूथ नंबर 109 रेजी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। अरविंद केजरीवाल जी बैठे हुए थे, बिल्कुल फोन पकड़कर अपने हाथ में फटाफट ट्वीट कर दिया, दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग, दिस इज कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ ईवीएम टैम्परिंग। वो शॉक्ड हो गए गिर पड़े और उन्होंने कहा कि ये एकदम ईवीएम टैम्परिंग हो गया है, उसका प्रूफ आ गया है हमारे पास। अरे भाई साहब आप इतने शॉक हो गए गिर पड़े, ईवीएम टैम्परिंग हो गई तो टॉयलेट क्यों मांग रहे थे सुप्रीम कोर्ट में? ये वाला क्या हुआ, ये वाला क्या हो गया, चले जाते इसको लेकर। आधे घंटे के बाद जिस चैनल ने ये चलाया था उस चैनल ने लिखा अरे हमसे गलती हो गई, वहां पर रजिस्टर्ड वोट जो है वो 772 नहीं है, वो 1110 है, लगभग 1110 है, 1101 है। उसके बाद वहां के सीईओ चीफ इलेक्शन ऑफिसर उन्होंने भी ट्वीट किया कि 1109 वोट है और ये फेक था, ये सब फेक था, और ये सीईओ की ट्वीट देखी, वो भी जानते हैं कि ये फेक है, अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, अभिषेक बनर्जी भी जानते हैं, ममता बनर्जी भी जानती है कि ये सब फेक था, मगर फेक न्यूज के आधार पर किस प्रकार से यहां एनार्की फैलाया जाए उसका पूरा षड्यंत्र ये केजरीवाल जी और उनकी कंपनी रच रही थी। अब आज एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं केजरीवाल जी से याद आ गया मेरे को, वो सुन तो रहे होंगे शौक धोके, केजरीवाल जी आप इतना शौक हो गए थे कल रेजी नगर में और एकदम कंक्लूसिव प्रूफ था ईवीएम टेम्परिंग का, तो अक्टूबर 8, 2026 अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, अक्टूबर 8, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस जयमाला बागची एंड वी मोहना ने आपके 50 वार्ड म्युनिसिपल वार्ड पंजाब में जो चुनाव हुए थे उसके 50 म्युनिसिपल वार्ड के इलेक्शन को सेट असाइड कर दिया और कहा कि यहां पर मार्च से पहले फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। यह चोरी है या फेक न्यूज चोरी है? ये चोर मचाए शोर, जो सबसे ज्यादा चोरी किया हुआ है, जिन लोगों ने सबसे अधिक लोकतंत्र को और इलेक्टोरल प्रोसेस को खतरा पहुंचाया है, डैमेज किया है, वो लोग यहां चोर चोर चिल्ला रहे हैं। मैं तो वो रेणुका चौधरी जी का एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं वो एक ऑटोमेटिक डोर के सामने खड़ी थी और आप लोग थे उनके सामने, तो वो ऑटोमेटिक वो कुछ बोल रही थी कि चोर वोट चोरी हो गई, तो वो ऑटोमेटिक डोर अपने आप कुछ 10 सेकंड में बंद होता है, वो डोर बंद हो रहा था, रेणुका चौधरी धक्का दे रही, कौन बंद कर रहा है इस दरवाजे को, कौन कौन है ये? तो नीचे किसी ने कमेंट किया था ये मोदी जी डोर को बंद कर रहे हैं, मोदी जी डोर चोर भी हैं। अगर मोदी जी गलती से कल को बोल दे कि सांस लेना बहुत जरूरी है जीवन के लिए, सभी सांस लें, तो मुझे तो शक है कहीं ये अपना नाक ना बंद कर लिए, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि सांस लेना जरूरी है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल छापा है, अन्य अखबारों ने भी छापा है, नो कोरिलेशन बिटवीन SIR डिलीशंस एंड असेंबली पोल रिजल्ट्स बंगाल CEO। ये पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं एक 20 सेकंड के अंदर। डीकोडर, एक डीकोडर नामक इन्फ्लुएंसर है, कौन बैठे हुए हैं आप मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बहुत लोगों ने बहुत हंगामा काटा। डीकोडर ने क्या कहा? डीकोडर ने कहा ये SIR में बड़ी गलतियां हो गई है, बड़े धांधली हो गए हैं बंगाल के अंदर, इसमें जो वोट काटे गए मुसलमानों के अधिकांश वोट कट गए, और उन्होंने कहा कि ये जो वोट काटे गए, जो 5 टॉप मोस्ट असेंबली सीट थी जिनमें वोट काटे गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई और भारतीय जनता पार्टी आगे रही, फायदा हो गया। उन्होंने कहा, डिकोडर ने कहा कि 62% जो वोट काटे गए वो महिला की थी, महिलाओं की थी। तो ये पूरी खबर बन के छप गई, हर जगह सोशल मीडिया में चलने लगा, लोग प्रश्न खड़ा करने लगे कि आखिर ये ऐसे कैसे हुआ, ये मुसलमानों के वोट क्यों काटे जा रहे हैं, 62% महिलाओं की वोट कैसे कट गए, और 5 टॉप सीट जिसमें सबसे अधिक वोट कटे बीजेपी को फायदा हो गया। अब CEO बंगाल ने ट्वीट किया, CEO बंगाल ने ट्वीट करके कहा कि नो, मतलब मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, कम समय है, पहले तो उन्होंने 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी के विषय में कहा, द इलेक्टोरल डाटा फॉर द वेस्ट बंगाल डज नॉट सपोर्ट द पॉलिटिकल नरेटिव ऑफ डीकोडर, द 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद द हाइएस्ट डिलीशंस शमशेरगंज चौरंगी मेटियाबुर्ज कोलकाता पोर्ट वेर वन बाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एंड जोरासंखो बाई बीजेपी, 4 तृणमूल कांग्रेस जीती है और 1 बीजेपी जीती है, द 5 विद द फ्यूएस्ट डिलीशन जिनमें सबसे कम डिलीशन हुआ, महिषा दल भगाबन पाऊ इंदस कातुलपुर और पातुषपुर, देवर ऑल वन बाई बीजेपी, जिसमें सबसे कम डिलीशन हुआ वो 5 बीजेपी जीती है, और महिलाओं का 50% वोट कटा है, 62% वोट नहीं कटा है, और देर इज नो डाटा बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी, जो अधिकांश वोट मुसलमानों के कटे थे, कोई डाटा नहीं है, ये डाटा गलत है कि 62% महिलाओं के वोट कटे और अधिकांश मुसलमानों के वोट कटे, तो यह भी सब कुछ गलत था। अभी कल, आज शनिवार है, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का दिखा रहा हूं मैं ही आपको, कल का है, आज के अखबारों में छपा है। YRCP कांग्रेस आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट गई थी कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसको आप शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि SIR में कुछ गड़बड़ी लग रहा है, Nothing wrong in deleting dead, shifted or duplicate voters, Supreme Court. Supreme Court ne kaha, the bench said, that those who have moved away could not be allowed to vote in the wards. Names of duplicate and deceased voters also needed to be struck off, and SIR took care of these anomalies.
0: Okay, so that's the BJP's big press conference on both Rahul Gandhi as well as the protests taking place in Delhi. Our coverage continues right here on NDTV. Quick break, back with more.

0: बताओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: After a smashing start, the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
6: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
5: दुनिया एक नई दहलीज पर अनिश्चित अनसुलझी बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
7: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए पर बिना अपने रूट्स को भूले।
8: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
9: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरनमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
10: एक परिवार अटूट भरोसा।
5: द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस डिकोड अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स। Dr. Swarnim Wagle, General David Petraeus, Swami Sarvapriyananda, Mike Walsh, Nicholas Butts, and the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, only on NDTV.
11: Welcome to the second edition of the NDTV World India Japan Summit.
12: Deep localization. What does it essentially mean for Maruti Suzuki?
13: To be competitive and to be agile for development and the resilience to any disruption. So that's how we set this deep localization as our next challenge.
14: How do you see the India-US relationship prosper?
15: I think what was an important basis. When people talk about God, they forget that it was an economic bonding. If you take a look at what happened around the COVID, the combination of these four countries and the way it went about, it was not a defense relationship.
14: Abe spoke about India and Japan having not only the ability but also the responsibility to shape the region.
16: Both nations, India and Japan, must work harder still to carry the torch of some of the basic fundamental values to shape the world to come.
14: How would you see India and Japan in particular want to see God evolve over the next decade?
17: What could be a catalyst rather than just a forbinger? What could be a facilitator of growth, security and development in the region? Then Quad will have more meaning to itself.
18: Joint Declaration on Economic Security.

0: हमारे शहर को सुंदर रखने की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
1: 1000 रुपए का तो पॉपकॉर्न है, कौन खाएगा?
2: तो पहले आप खाओ ना।
3: आप में से कितने लोग अपना डेटा शेयर करने के लिए रेडी हो गए?
4: अगर आप खुद स्ट्रांग नहीं है, आई थिंक नोबडी कैन हेल्प यू।
5: जरूरी नहीं है कि सबको 100 करोड़ 1000 करोड़ बनाना है।
6: Good morning, Mumbai, and a very warm welcome to ITW Universe Presents NDTV UR 2026 Young Voices Bold Dialogues. Before we begin, can we have a huge round of applause from all of you so that we start with a lot of energy? Lovely. Today is all about young voices.

0: is a question, create, challenge, experiment, and sometimes simply refuse to accept. Aisa hi hota hai. My name is Arun Singh and I have my co-host Ranjana as well.
1: हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बिल्कुल सही अरुण आपने कहा। देखिए, वो युवा है जो विचारों को मानता है पर विचारधाराओं की सीमाओं से बिल्कुल बंधता नहीं है। और आज कुछ ऐसे ही युवाओं के साथ इस मंच को अरुण हम साझा करने वाले हैं और बेहद ही खूबसूरत पैनल होगा जहां बात होगी एआई से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक की, स्पोर्ट्स से लेकर सिनेमा तक की और कॉमेडी से लेकर पॉलिटिक्स तक की।
2: BMC 570% tax लगाने वाले in theaters that will be played in Mumbai.
3: 70%
2: more. So what is your take on that, ma'am?
3: कौन देखेगा फिर फिल्में? वैसे कोई नहीं देख रहा। कोई नहीं, सच्ची में अगर फिल्म देखने जाना हो आपकी 2-3 हज़ार तो easily, 1,000 रुपए का तो पॉपकॉर्न है, कौन खाएगा? Going to a theater is such an expensive experience now and it's also very classist, I must say. क्योंकि वो जो single screen है ना, वो खत्म हो गई है, so you've already alienated your audience. There are a lot of people who find going to a theater very intimidating. क्योंकि उनको लगता है कि वो वहाँ पे fit नहीं करते, तो आपने वैसे ही alienate कर दिया and this is like very sad. Exactly. It shouldn't be the case.
4: क्या social media censorship की आज ज़रूरत है?
3: बिल्कुल है, बट ये कैसे करेंगे हम? क्योंकि इतने सारे फेसलेस या तो बॉट्स होते हैं या तो लोग हैं जो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, वो आपको क्वेश्चन करेंगे आपके लुक्स के ऊपर, 50 चीज़ों के ऊपर। जब ये वो लोग होते हैं जिनके बायो पे लिखा होता है लिव एंड लेट लिव, पर वो जब भी किसी और के बारे में बात करते बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से बात करते। सो आई जेन्युइनली फील इट इज़ टाइम टू टेक अकाउंटेबिलिटी। जब तक वो फियर ऑफ लॉ नहीं होगा ना, वो इंसान बदलेगा ही नहीं। एंड सिर्फ पब्लिक फिगर्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली लड़कियां जिनके अकाउंट्स ओपन होते हैं, कितने सारे लड़कों के मैसेजेस आते हैं जो मतलब ख़राब चीज़ें बोलते हैं। हम लोग तो वी आर स्टिल ओल्डर, वी नो हाउ टू टैकल इट, बट जो यंगर लोग हैं, यंगर जनरेशन है, वो गलत स्टेप ले भी लेते हैं।
5: ज़रूरी नहीं है कि सबको 100 crores, 1,000 crores बनाना है या फेमस होना है या जो भी। आई फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड आपको क्या चाहिए, नॉट कि किसी ने वो किया मुझे भी करना है, वैसा नहीं। आपको जेन्युइनली क्या अच्छा लगता है, आपका पैशन क्या है, व्हेन यू गो फॉर इट उसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी होता है और सक्सेस भी मिलता है। टुडे राइट, देर इज़ सो मच ज्ञान एवरीवेयर, सोशल मीडिया, चैट GPT, देर इज़ सो मच इन्फॉर्मेशन दैट कन्फ्यूजिंग हो सकता है। करना सब कुछ है बट लैक ऑफ क्लैरिटी। सो आई फील स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग आपका पैशन क्या है इज़ द वे टू गो फॉर इट।
6: सबसे पहले तो मैं युवा को ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई चीज़ है जो परेशान कर रही है, इट्स वेरी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू स्पीक अबाउट दैट। बींग वोकल इज वेरी इम्पॉर्टेंट
7: एंड it's very important to not judge yourself because there will be people around you who will make you feel insecure. There are people around you who will try to put you down. Never doubt yourself. Believe in yourself. Never compare yourself with anyone because your individuality is your superpower.
8: Last year, लगभग 236 young girls की हमने जान बचाई जिन्होंने इंटरनेट में डिक्लेयर कर दिया था कि we are quitting. That's the kind of effect cybercrime is having on the impressionable minds of our youngsters. Cybercrime ab crime nahi raha, cybercrime ab cyber terrorism mein tabdeel ho chuka hai. AIIMS, JNPT, cyber security departments, IB, RAW, sab cyber attack ke shikar ho chuke hain. Aur aapko bata dun, jab Pehelgaon ke aftermath mein Bharat ne operation sindoor chalaya tha, to Bharat par 10 lakh se zyada cyber attacks hue the और उनमें से 1% करीब सक्सेसफुल भी हुए थे।
9: अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो, जैसे पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो, तो पहले आप खाओ ना। आपके चिल्ड्रन जो है उनको खाने को लगाओ, लेट लेट बी हैबिट। अगर आप वो बोल रहे हो कि उसमें केसर है तो आप केसर खाना चाहोगे ना, तो खाने दो ना, आपके फैमिली में खाओ, देन बाकी लोगों को बोलो व्हाई अदर वे अराउंड।
1: इसके अलावा ये बताइए, सबसे ज्यादा डर क्या है आपके हृदय में?
9: ज्यादा
1: भय, डर किस बात का है?
9: मुझे किस चीज का भी डर नहीं है। मैं मुझे ये बहुत लोगों ने सवाल पूछा, मुझे समझ में डर किस चीज का है? नथिंग इन द वर्ल्ड यू शुड फियर ऑफ, ओनली वन थिंग यू शुड बी फियर्ड ऑफ इज डूइंग रॉन्ग थिंग, दैट्स इट।
1: यूथ ही जब ये कहता है कि हम क्या करें, सिस्टम ही ऐसा है।
9: आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, इसलिए यू आर पॉइंटिंग कि सिस्टम ऐसा ही है, क्या करें? यू आर पार्ट ऑफ सिस्टम, ट्राई टू इम्प्रूव वट एवर इज इन योर कैपेसिटी। जिस दिन हम ये करना चालू करेंगे उस दिन हम सिस्टम को ब्लेम करना बंद कर देंगे, और जिस दिन ये ब्लेम करना बंद कर देंगे

0: उस दिन हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली सुधर गया होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू माई बिट।
1: किसी भी मेट्रो सिटी को अगर एफिशिएंट रहना है, अप टू मार्क रहना है, तो उसकी जो मोबिलिटी है वो सबसे अच्छी होनी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द टारगेट विच वी हैव केप्ट इन माइंड। सो अभी जो भी बचा हुआ काम है वो अगले दो तो तीन साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। okay. और उसमें हमारा जो ट्रांसपोर्ट एक्सपीरियंस है दैट इज गोइंग टू सब्सटेंशियली चेंज।
2: आज के युवा से कनेक्ट करते हुए कि कितना सिविक सेंस उनमें है और मुंबई को क्लीन रखने के लिए, साफ रखने के लिए हमारी युवा क्या कर सकती है?
1: आई थिंक पहले तो सबको अपना सिटी ओन अप करना चाहिए। हम हमारे घर को तो गंदा नहीं रखते ना। अगर ये मेरा शहर है तो ये शहर को सुंदर रखने की जिम्मेदारी सिर्फ BMC की नहीं है, ये हर एक की है। अगर हर एक ने ये डिसाइड किया तो हम लोग उसको सुंदर जरूर रख सकते।
3: युवा इतने होशियार है, आपके एक्टिविटीज से जिस तरीके के एखादा मुद्दा लेके आप लड़ते हो उस पर वो ध्यान रखते हैं, तो आप एक्टिंग मत करना। अगर आप एक्टिंग करोगे तो ये एक्टिंग डेफिनेटली जेन ज़ी और युवा पीढ़ी उसके पकड़ेगी।

0: we are the people who are willing to question the old systems that we don't believe in. And वो हम घर से कभी कभार नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम रोड पे आ जाते हैं, तो फिर रोड पे आते हैं तो लोगों का ध्यान आ जाता है कि बच्चे सड़क पर आ गए. सबसे पहले तो ये सवाल कि क्यों बच्चों को स्कूल के बदले, कॉलेजेस के बदले, इंस्टीट्यूशंस के बदले उन्हें क्यों सड़क पर आना पड़ा.
1: मैं डिजिटल मीडिया पर थोड़ा आना चाहती हूँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर. जंतर मंतर में जब आंदोलन हुआ उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल इस बात को लेकर निकला कि क्या इस बार चुनाव इंस्टाग्राम पर लड़ा जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तक को उस प्लेटफॉर्म पर आना पड़ रहा है.
2: 12 years ago, 13 years ago, उस समय भारत की छवि में दे यूज टू बी अ मैल नरिश्ड भूख के साथ एक बच्चा जिसकी रिब्स दिख रहे हैं. आज वही 12 साल के बाद, आई एम नॉट सेइंग
3: दैट टेलिंग मी दैट मोदी जी हैज मेड दैट मैल नरिश बच्चा इनटू
2: नॉन मैल नरिश्ड बच्चा. आई एम अनीश भाई,
3: लाइक लेट्स हैव सम लिमिट्स.
2: अनीश भाई
3: मैं जय जय मोदी हर मोदी पर इतना
4: भी देर से. अभी मेरे को ये समझ नहीं आता हमें इस बात से भी क्यों दिक्कत है कि भारत की जो इमेज है वो दुनिया में अच्छी हुई, इसमें क्यों किसी को प्रॉब्लम होगी. वी हैड जस्ट 4 यूनिकॉर्न्स इन 2013. We have 250 unicorns today. ये है जो भारत की इमेज बनाता है. हमारे देश में 250 स्टार्टअप्स थे, DPIIT का डेटा है. आज 2,40,000 स्टार्टअप्स हैं देश में. ये है जो हमारे देश की इमेज बनाता है. टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के अंदर जो हमारा यूथ है वो एस्पिरेशनल है, वो स्टार्टअप्स बनाना चाह रहा है, वो जाकर के इनोवेशंस करना चाह रहा है. ये है जो हमारी इमेज बनाता है. दुनिया को लग रहा है इंडिया इज ब्राइट स्पॉट. हम फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी थे 2013 में, हम फैंटास्टिक 5 की इकोनॉमी बन गए 2026 में.
5: Freedom is very important, but without guardrails is a free fall. So that's where I strongly believe universities do have to set some benchmarks, some standards, some lines that should not be crossed. There are thousands of videos on YouTube freely available, how to build your biceps, your resistance training, etc. We still pay a lot and go to gyms. You need a trainer. You need somebody to watch you, look at you, correct you in your momentum, in your pace, and make you understand what it needs. So universities will exist, a coach will exist, but you have a lot of technological benefits.
6: And coming from a business family, I've learned that if the product is good, and then the marketing, and then the advertising, and then the reviews of the consumer and the customer, I feel these four things are the most important if you want a successful business. And anything and everything that you do with the right intention will always go in the perfect direction. And be it movies or business, if your intention is correct, your message is always reaches the right audience.
7: Ek quick rapid fire main aapke saath karna chahungi. Koi aisi cheez jo ad dekhkar kabhi aap nahi khareedna chahenge?
6: Skin care.
7: Ek aisa business decision jo aap redo karna chahein?
6: I'm on a very initial stage to think about that, but aisi bahut cheeze hain jo main abhi karna chahti hu rather than thinking about main abhi redo kya karna chahti hu.
7: Ek aisa compliment jo aapko lagta hai ki mahilaon ko sabse zyada milna chahiye.
6: You look so beautiful.
7: Yuva ko ek shabd mein aap kaise, how do you, would you explain it?
6: I feel this generation is very ambitious and all of us are very hardworking and true to our dreams.
8: आज की जनरेशन हम लोग से काफ़ी इंटेलिजेंट है, एंड देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट. इसमें एक चीज़ मेरा सजेशन है युवाओं को, सक्सेसफुल होने के लिए देर इज़ नो वर्क लाइफ बैलेंस इन लाइफ. आपको जो इनिशियल टाइम है उसमें काम के अलावा कोई अगर आप बैलेंस ढूंढोगे तो देर कुड बी लकी फ्यू विच वुड स्टिल सक्सीड. आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट किसी भी ड्रीम को जब आप चेस करते हैं, जब आगे निकलते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं. और वही जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं और जिसको आप फाइट करते हैं और उसके बाद आप उससे उभर के निकलते हैं, वही एक इंसान को सक्सेस दिलाता है.
9: When we are at the dilemma stage, whether we need to choose safe career or your passion. So I can suggest, if you are very passionate about doing something, so definitely you should try. Otherwise, you will have that regret with you, not doing it. If someone believes you, you work hard and prove them they are right. If someone not believes in you, work double hard and prove them they are wrong. That should be your idea. And second is, see, the challenges will be there in entire journey. The success will not come in overnight. It is a continuous process.
10: One who knows their why can figure out any how. अगर आपको वजह पता है, पर्पस पता है कि आप जो करना चाह रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, सो यू विल फिगर आउट कि कैसे करना है. आई थिंक इट्स वेरी गुड टाइम टू बी एन एंटरप्रेन्योर इन द कंट्री, क्योंकि आपके पास पूरा इकोसिस्टम है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास ChatGPT, क्लाउड है. बेसिक से आपको सिखा सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी बैकग्राउंड इन इट. आप कोडिंग से लेके एक मैन्युफैक्चरिंग मशीन कैसे काम करती है, सब अपने

0: लेवल पे सीख सकते हैं। फाइनेंशियल बैकिंग के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं, यू जस्ट हैव टू फाइंड इट।
1: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
2: so many attacks,
1: the chaos and cries of disaster zones, the fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
2: It's incredible.
1: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
2: Welcome to Left, Right and Center.
1: Hard facts.
2: What?

0: मैं यूएस में 13 साल के लिए था एंड जब मैं यूएस में था, यूएस में इंडिया से भी ज्यादा पैकेज फूड खाते हैं लोग. तो मुझे लगा कि आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. व्हाई डोंट आई लीव द यूएस एंड आई रेज अवेयरनेस अबाउट दिस थिंग इन इंडिया. इंडिया में लोग एडुकेटेड हैं लेकिन हम हेल्थ लिटरेट नहीं है.
1: अच्छा, दुनिया की 4 बड़ी MNCs ने आपके खिलाफ लीगल नोटिस भेजा हुआ है.
0: सो आई हैव वन लाइन फॉर ऑल दीज ब्रांड्स. इफ यू सेंड मी अ लीगल नोटिस, आई विल गेट यू पब्लिकली नोटिस.
2: फनी रील या कॉन्ट्रोवर्शियल रील, एल्गोरिथम में क्या ज्यादा बिकता है?
3: इट्स वेरी इजी टू थिंक कि आज कोई ट्रेंड कर दिया तो वो चल जाएगा, बट देन यू ऑल्सो एज अ क्रिएटर हैव टू थिंक अबाउट कंसिस्टेंसी. क्योंकि अगर आपकी एक रील फटती है तो जरूरी नहीं है कि आपकी बाकी 10 और रील भी फटेंगे.
2: हेमा, क्या ये सच है कि गुरु रंधावा कमेंट करते हैं और हायर कर लेते हैं?
4: मेरे लिए बहुत अच्छा था ये मूवमेंट जब उनका मुझे मैसेज आया, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था तो लोग मेरे कलर को लेके बहुत बहुत बोला है लोगों ने, काली दिखती है, ब्लैक बेरी है, या कपड़े कैसे पहनती है, वॉक कैसे करती है, बहुत लोगों ने बोला है. बट जब गुरु सर ने

0: बना रहे हो तो आप वो एक साल दो साल तीन साल में भी कर सकते हो
1: और आप दो टैक्स स्लैब ऊपर तो चले जाओगे ऐसे।
2: Ronak,
3: hi.
2: How are you?
3: I'm good. How are you, brother?
2: Good. Have you recovered from Rocky Sawant?
3: Yes, I'm trying. I'm still trying.
2: But a lot of people in the comments are saying that, you know, you were taken aback and you probably didn't expect that avatar of her coming.
3: I did expect all of it.
2: Okay.
3: I just didn't expect it to all be that much.
4: I think yeah. He was in awe of
3: her. I was in awe of her.
2: Really?
3: Yes, I was in awe of her. I was awestruck. Thank you. Yes.
5: Stand-up comedy is a very brutal profession. When it works, you feel a huge sense of achievement. And when it fails, it's so gut-wrenchingly horrific that most people stop doing comedy, which is the right thing to do for your mental health. So, and the few of us who still do it, I don't know why we do it, because the highs are very high.
4: As he said, it's quite unpredictable. Kabhi bhi kuch bhi ho sakta hai. You might be thinking, oh, this is my audience, and you might bomb really hard. But the next day, you just want to redeem yourself. So you keep on going on stage and back to back cheese hotel, and of course money, and that's why we hang out with
2: yes.
4: Warren.
6: Basically, I would say around the time I started working with a lot of the colleagues on stage in the industry generally, people were doing small bar gigs, small theater gigs, and it's really evolved into sort of being a cultural force overall. I don't want to get into the specifics of the numbers, but folks have gone from playing 200 seaters to a couple of thousand, some doing 5,000 seats. Brands interacting with us as if we're as legitimate an industry as any others. I think that's the best I can say without anybody's tax bracket becoming a problem.
7: समाज सेवा और समाज के लिए कुछ करना मैं बोल सकती हूँ कि बचपन से मेरा एक उद्देश्य रहा और आपका एक छोटा सा कोशिश किसी के ज़िंदगी में जब परिवर्तन लाता है जब आप उसके चेहरे पे खुशी देखते हैं तो वो जो आत्मसंतुष्टि जो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है वो सबसे प्रेशियस होता है और इसी सोच के साथ मैंने मेघा श्रेय NGO की स्थापना की और समाज सेवा से जुड़ी।
8: Worst part that I see with Gen Z today is the death of real intelligence. Since AI is something that people use every single day, तो वो अपना खुद का दिमाग use करना ही छोड़ देते हैं। मतलब ये this is a double-edged sword, right? आप में से कितने लोग अपना data share करने के लिए ready हो गए?
9: Even in my company, I keep telling people that get better at these two things. A, you should have as much context that people would not want you to leave the room. And second, judgment. I think what Ishan also said, right? Ki aaj ke din mein real intelligence is more important. And what is extremely important is if you can be the judge of what is good and what is bad. So I would just say that develop these two skills, have like great judgment and have so much depth and context ki koi aapko bol hi nahi sakta ki main aapke bina ye kar sakti hu.
10: Jaise aap jante hain Nimaya Foundation hazaron mahilaon ko AI sikhata hai. To Haryana mein ek college hai jahan pe humne ek ladki se pucha ki aapne kya kiya ye course ke baad. तो उसने कहा कि मैंने एक दादी दादा बॉट बनाया। मैंने कहा वो क्या होता है? तो उसने कहा कि मैंने ये देखा कि मेरे गांव या कम्युनिटी में ग्रैंडपेरेंट्स बहुत कम हैं। तो मैंने ना चैट जीपीटी या जो भी उसने प्लेटफॉर्म को ट्रेन किया ताकि वो अपने युवाओं के साथ दादी दादा की तरह बात करे, उनको कहानी सुनाए। तो वहां से मुझे एक थॉट आया कि जिन लोगों के पास डिग्री नहीं है, जिन लोगों के पास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, उन लोगों के लिए AI तो एक पेंट ब्रश है और प्रॉम्प्टिंग समझ लो रंग है और कैनवस एम्प्टी है। तो विथ ह्यूमन जजमेंट ह्यूमन क्रिएटिविटी बट दिस पावर कि अब AI के द्वारा आप वो क्रिएट कर सकते हैं जो पहले आप सिर्फ सोच सकते थे, वो पावर है।
11: मेरा बच्चा है 9 साल का है, उसे फास्ट बॉलर बनना था, मैंने उसे खुद ने मना किया है। मुंह से लेके टो तक इंजरीज है मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे 15 स्टिचेज आए मुंह पे बॉल लगने पे। मेरा स्कैपुला डैमेज हुआ है बॉलिंग करते करते, मेरा शोल्डर डैमेज हुआ है बॉलिंग करते करते, मेरा C6 C7 में आर्थराइटिस है, मेरा L3 L4 L5 5 फ्रैक्चर्स बॉलिंग के एक्शन की वजह से था, वो कभी हील नहीं हुआ। मेरा डिस्क प्रोलैप्स हुआ है बॉलिंग की वजह से, मेरा साइड स्ट्रेन कई बार स्ट्रेन हुआ है Grade 1 Grade 2 लेवल पे, मेरा डिस्क पूरी तरह से डैमेज है, मुझे बार बार आर्चेस वाली एक्सरसाइज अभी तक करनी पड़ती है। लेफ्ट नी में आर्थराइटिस है, राइट नी पटेला डैमेज है, लेफ्ट नी कार्टिलेज डैमेज है, राइट नी मेनिस्कस डैमेज है, मेरा टो फ्रैक्चर हुआ है। सो इस पूरे रूम में सिर्फ 3 लोगों ने हाथ उठाया फास्ट बॉलिंग के लिए, मैं समझ सकता हूँ।
12: आपका क्या

0: एडवाइस होगा ये जो यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ देयर करियर्स?
1: द ओनली पीपल हु आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर टफ टाइम इज योर पेरेंट्स एंड योरसेल्फ. अगर आप खुद स्ट्रांग नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, आई थिंक नोबडी कैन हेल्प यू.
0: यहाँ पे बहुत युवा ऑडियंस हैं, इनको आप बताएंगे कि वुशु है क्या?
2: वुशु एक चाइनीज मार्शल आर्ट है. जेडी, जैकी चान, मतलब सभी कुंगफू में जाना जाता है उसको, जैसे हम लोगों ने फिल्मों में देखता था. और कंटेक्ट स्पोर्ट्स मतलब फाइट भी है, दोनों ऐसे जुड़ा जाके वुशु कहता है.
0: और आपके पास बहुत कम दिन थे प्रेपरेशन के लिए.
2: लास्ट ओवर में मेरा नाम आ गया तो हमको थोड़ा खुशी मिला कि इंडिया टीम में मैं शामिल हो पाया. पर भी कल टीम जाने वाला है और आज मुझे मेरा फिटनेस टेस्ट और फिटनेस का एग्जामिनिंग किया, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर था. पर भी एक हमको मौका मिला है तो नहीं छोड़ना है और मैदान में दिखाना है.
0: और रोशबीना, वहाँ पहुँचने के बाद आप एक और सिल्वर मेडल जीतती हैं.
3: Golf is one of those sports which is such a mix of the mentality as well as the physicality. It is very tiring in that sense because you need to be 100% focused at all times. You need to be like thinking about so many external factors as well, along with obviously the technique which is very complicated, and all of that just adds up to make it pretty taxing, I would think.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित, अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन NDTV वर्ल्ड समिट 2026 में NDTV के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। NDTV वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली। आफ्टर स्मैशिंग स्टार्ट The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad.

0: Remember, UAE and India have quite a deep relationship when it comes to intelligence sharing, law and order. They have an extradition arrangement as well. The UAE in the past has shared a lot of information about Indian criminals who've taken refuge in the UAE, etc. So there is reason to believe that there will be cooperation from the UAE side, being the key investigation country in this. Remember, Israel is also probing. Saudi Arabia also has a role, but the United Arab Emirates is the lead investigator of what is going on. While Captain Smith is recovering in Dubai, this man Al-Hamami, the hijacker, the potential hijacker rather, is being questioned and in under detention in Abu Dhabi. Whether or not the Indian NIA team will get access to him, will be able to interrogate him themselves, is again, like I said, unclear, because these are this is an international sort of investigation, transcending many different agencies at this point of time. But the fact of the matter is, I think this case has been registered, obviously, because the immediate victim of this hijacker was an Indian national, Captain Smith Machar, therefore the NIA can't be on the sidelines of this. And I think it has taken some time, more than a week now, for the Indian government to take a call. It cannot join the probe directly unless something happens in the UAE. But the NIA has done the next best thing, which is register our own case and then see where it goes once that team lands in the Emirates.
1: Shiva, I concur with you there that the contours of this entire investigation will only be clarified in the days to come, because there's a clear jurisdictional issues. While the multiple agencies and countries are investigating this matter, it involved a common airspace and, of course, the nationals on board. And that is one of the reasons that those countries are part of. As far as India is concerned, on multiple platforms, as you pointed out, information has been shared between countries in the Gulf, in the Middle East and India. In this particular matter, is there a possibility that there could be some kind of information or intelligence exchange on two sides?
0: I imagine, Anusha, that information and intelligence sharing has already happened. Like I said, Delhi and Abu Dhabi have a deep relationship. There have been cases where terrorists who've been apprehended by the UAE have actually been extradited to India. There is a history of this. The law and order cooperation mechanism between the two countries is actually quite strong, unlike India's relationship with many other Gulf countries. So there is reason to believe that there will be more than just superficial cooperation. If an NIA team is heading to the United Arab Emirates, as our reporters are telling us, then there may be really a reason to believe that it won't just be a kind of fishing expedition, but rather that there might be access to further information. We don't know what that is yet. Could it be information about the aircraft? Is it access to the hijacker? Is it more information that only the Dubai state security agencies can share in person? All of that is pretty much conjecture at this point of time. But this is a huge step that India has taken. The NIA is the premier counter-terror investigative body in the country, and there had been some murmurs about how India cannot really afford to be on the sidelines of this investigation, given that Captain Smith, the lead pilot, is an Indian national and Indian citizen. And therefore, India can't simply monitor the situation from the sidelines or from the outside. So this is the only way to get into it. Whether it means joining the probe or not, like you said, Anusha, we'll have to see how that unfolds.
1: Absolutely. Thank you, Shiv, for putting all of that into perspective. We'll, of course, await more clarity and details about what this investigation will entail. Cutting across live to the press conference of BJP leader Ravi Shankar Prasad. Let's listen in.
2: लेकिन proxy शब्द थोड़ा शालीन लगता है मुझे. Shadow boxing. CJP आम आदमी पार्टी की shadow boxing करती है. और आपने देखा होगा, सुबह से उनका नाटक चल रहा था और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, फिर वो आ गई और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए. ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है और सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर रहे हैं. लेकिन हमें गर्व है हिंदुस्तान की जनता पर कि उन्होंने उनके इस षड्यंत्र को निरस्त किया है, असफल किया है. लोकतंत्र की शालीनता, जनता का आशीर्वाद, अराजकता पर विजय हुआ है। और इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, द डिग्निटी ऑफ डेमोक्रेसी हैज डिस्ट्रॉयड द क्रोनिक एनार्की विच द अपोजिशन इज ट्राइंग टू फोमेंट। क्या चाहते हैं आप? आज कुछ हम बड़े सवाल उठाना चाहते हैं यहां पर, ये चाहते क्या है? और थोड़ा इसका बैकग्राउंड देना जरूरी है आज की परिस्थिति को समझने के लिए। याद करिए, जब मोदी जी 15 में आए थे, जीते थे 14 में, तो 15 से ईवीएम की कहानी शुरू की गई। उस समय देश का कानून मंत्री था, बहुत बहस संसद में हुई। हमने बताया कि जब आप जीते तो ईवीएम ठीक, चाहे मायावती या अखिलेश, और जब मोदी जीते तो ईवीएम खराब। फिर जब 19 में मोदी जी जीत गए, फिर 24 में जीत गए, तो फिर एसआईआर की कहानी शुरू की गई। मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं, लगभग 9 से अधिक बार देश में एसआईआर हुआ है। और ये कानून में प्रावधान है। मैं आज देश के सामने आप लोगों के माध्यम से एक सवाल कहना चाहता हूं, जो मर गए वो वोटर नहीं रह सकते, उन्हें रहना चाहिए क्या? जो अपने क्षेत्र में लोकसभा या विधानसभा में निवास नहीं करते वोटर नहीं बन सकते, और एक जगह से अधिक का वोटर नहीं बन सकते। मैं पटना साहिब का एमपी हूं, लगभग 40,000 मेरे यहां भी लोग कटे हैं, मुझे तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आज देश के सामने यह संख्या जानी जरूरी है कि अभी तक 2,89,00,000 वोटर्स वे फाउंडेड, 2.89 करोड़, 6.3 करोड़ शिफ्टेड, 1 करोड़ डुप्लीकेट और 3 करोड़ एब्सेंट, तो यह संख्या लगभग 13 करोड़ की आती है। आपको इस पर कहने का अधिकार है कि कोई गलत है तो उसका नाम ऐड हो सकता है, आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल और मैं उठाना चाहता हूं, जो घुसपैठिए हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है, क्या उनको वोटर बनना चाहिए? तो ये लड़ाई किस बात की कर रहे हैं? ये चाहते क्या है? ये बात बार बार पार्टी की ओर से कही गई है कि संवैधानिक संस्थाओं का राहुल गांधी सम्मान नहीं करते, और अब तो ये हाल है कि उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने को भी झूठ बयानी का आधार बना लिया है। कि समानता देश में यह नहीं होता कि आज राष्ट्रपति के सोर्सेस से भी कहा गया कि उनके बारे में जो बात कही गई है एलओपी के द्वारा वो गलत है। तो राहुल गांधी जी, अब राष्ट्रपति के सोर्सेस से भी आपकी झूठ बयानी पकड़ ली गई है। राष्ट्रपति जी ये तो नहीं कहेंगे ना, वो तो एक्सेप्ट नहीं देंगे, लेकिन अब तो कमेंट आ गया। मित्रों, आज मैं किसी चुनाव आयोग का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बैकग्राउंड देना जरूरी है। मेरे पास पूरी सूची है कि कितने लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन्होंने राज्यपाल बनाया, और एक साहब तो कमाल के थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हटे, राज्यसभा के एमपी बने और मंत्री बने। और उस समय मैं पार्टी का मुख्य, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा आज, आई डोंट वॉन्ट टू ग्लोरीफाई दम, लेकिन उस समय पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था, यहीं से पूछा था कि आप जवाब दीजिए, तो उनसे पूछा गया, कहा इसको मैं उचित समय पर जवाब दूंगा, और उचित समय कभी आया ही नहीं, उनकी राज्यसभा भी खत्म हो गई और मंत्री पद भी खत्म हो गया। एक श्रीमान जी का नाम मैं जरूर लूंगा, नवीन चावला का। यहां मेरे कुछ पुराने मित्र बैठे हुए हैं, अखिलेश जी को मैं देख रहा हूं, उनकी कोशिश थी कि भाजपा को बैन कर दिया जाए। और स्वर्गीय अरुण जेटली, हम लोग गए थे इलेक्शन कमीशन में, उनके खिलाफ बायस की शिकायत की थी, और उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर गोपाल रामास्वामी ने लिखा था कि इनको हटाया जाए, और हटाने की बात तो दूर, मनमोहन सिंह की सरकार ने उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया था। और ये कौन थे नवीन चावला? इमरजेंसी में जो डिटेनी थे उनको तंग किया जाए, गर्मी में परेशान किया जाए, ऐसे लोग थे। और ये हमें नसीहत दे रहे हैं, राहुल गांधी कृपया करके ये बदतमीजी बंद करिए कि इमरजेंसी आ गई है। इमरजेंसी की आपकी पूरी कहानी, आपकी दादी की कहानी ये देश जानता है, किस प्रकार से आप ये दादी जी जब उनका इलेक्शन सेटिसाइड हो गया था तो उनकी कुर्सी को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला था, जजेस सुपरसीड किए गए, सेंसर लगाया गया, पूरा बहादुर शाह जफर मार्ग में सारे दफ्तर थे अखबारों के, उसकी बिजली काट दी गई, पॉलिटिकल पार्टी बैन की गई, जेपी को गिरफ्तार किया गया, संघ के स्वयंसेवकों की नाखून नोचे गए। राहुल गांधी, यह लगता है आप नहीं जानते हैं या आप जानना नहीं चाहते हैं, तो कृपया करके आप इमरजेंसी की बात तो हमें न कहें। और आज जेपी का दो दिन पहले जन्म दिवस था, मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला। उनकी किडनी खराब हो गई थी इन लोगों के द्वारा, और वो जसलोक अस्पताल में थे। डॉक्टरों ने कहा इनको धूप की जरूरत है, वरांडे में बैठने दिया जाए। नहीं, 26वें फ्लोर जनता देखेगी तो हंगामा हो जाएगा। बाद में स्वर्गीय सोली सोराबजी वगैरह जब कोर्ट जाने की बात की तब उनको एक घंटे धूप में बैठने दिया गया। यह है राहुल गांधी, आपकी पार्टी का इतिहास, और हमें कहते हैं इमरजेंसी की बात। और ये सारे वामपंथी जो हैं इमरजेंसी के समर्थक थे। इसलिए प्लीज डोंट गिव लेक्चर टू अस ऑन इमरजेंसी, वी हैव फॉट अगेंस्ट द इमरजेंसी। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी आज भी सरदार के वेश में, जो देश में उन्होंने जबरदस्त प्रतिवाद और प्रतिकार पैदा किया था, ऑलमोस्ट लाइक लेजेंड, उन्होंने जानते हैं। मित्रों, एक और बात जो मुझे कहनी है, क्या चाहते क्या है आज ये सवाल, चूंकि आज एक प्रकार से लोकतंत्र की विजय का दिन है, और जो बार बार कहा जा रहा है संविधान संविधान, हमें राइट टू प्रोटेस्ट है, तो संविधान की धारा 19 के क्लॉज 2 में इस बात का प्रावधान है कि अगर आप देश की सुरक्षा हार्मोनी इत्यादि का विरोध करते हैं तो आपकी वो अधिकार को नियंत्रित सीमित किया जा सकता है। तो पूरी दिल्ली को आके आप घेर लेंगे, लोग चल नहीं सकते, आ नहीं सकते, कुछ हजार लोग हैं, और अगर पुलिस ने कार्रवाई की सुरक्षा के नाम पर, सहूलियत के नाम पर, तो आप कहते हैं वी हैव गॉट द राइट टू प्रोटेस्ट। मुझे लगा कि ये जो उनके बार बार दावे किए जा रहे हैं उसको थोड़ा आपके सामने रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार, ये लोग आजकल तो एक और नई बात मुझे दिखाई पड़ती है, एट अ ड्रॉप ऑफ ए हैट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। एसआईआर को चैलेंज करने में वामपंथी भी थे, कांग्रेस पार्टी भी थी, टीएमसी भी थी, सब चले गए थे, और कुछ तो झोला छाप रहते ही हैं, वो चले ही जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सुना, और बार बार सुनने के बाद क्या कहा कि एसआईआर चलेगा, और ममता जी ने बहुत शिकायत की तो पूरे बंगाल के चुनाव को उन्होंने जुडिशियल ऑफिसर्स को दे दिया था, याद होगा आपको, ताकि कोई शिकायत तो नहीं होगी। उन जुडिशियल ऑफिसर साथ क्या बदतमीजी बदसलूकी की, आप जानते हैं कि लेडी जुडिशियल ऑफिसर रो रही थी, इतना हंगामा किया था। तो आप कोर्ट नहीं मानते, आप वोट नहीं मानते, आप डेमोक्रेसी नहीं मानते, आप कहीं ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो क्या है? निष्कर्ष साफ है, ये ट्रस्ट एक ही बात में करते हैं, फॉरेन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस को। एक नैरेटिव बनाओ कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, और ये नैरेटिव कब कब बनता है? जब जब भारत की आर्थिक प्रगति बहुत तेजी से चलती है मोदी जी की अगुवाई में। आपने लेटेस्ट रिपोर्ट सब देखी होगी, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट। तो बस, और इसमें तो गजब तमाशा देखने को आ रहा है साहब। कुछ लोग जो विदेशी कुछ इन्वेस्टर्स को लेके क्या क्या राग अलापते थे, आज उनका अभिनंदन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं, इंडिया इज नॉट ए बनाना रिपब्लिक, और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये देश न कभी झुका है न कभी झुकेगा। देश के हित में जो उचित फैसले लिए जाएंगे वो करेगा, और किसी की मोनोपोली को स्वीकार नहीं करेगा।
1: All right, that was the press conference of the BJP leader Ravishankar Prasad slamming the protests and the protesters and taking a dig at the opposition that they were trying to turn the entire national capital into chaos, and that is the reason police had to take the action that it did. The story and much more remains our top focus here on NDTV. For now, slipping into a very short break.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

एक नई दहलीज पर अनिश्चित अनसुलझी बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।

0: वेल डन किड्स, आज दिन की शुरुआत हुई है बच्चों की आवाज से, इससे खूबसूरत दिन कैसे हो सकता है?
1: एब्सोल्युटली आयुष्मान, और ना सिर्फ आज का दिन, ऑफ कोर्स इज गांधी जयंती, लेकिन इनका जुनून देख के, यू नो, सीइंग द एक्साइटमेंट इन देयर वॉइसेस, हमें ये पता है कि वी आर इन सेफ हैंड्स, आवर फ्यूचर जनरेशंस आर गोइंग टू कीप अस सेफ एंड हेल्दी. थैंक यू सो मच बच्चों.
0: थैंक यू किड्स,
1: बिग राउंड ऑफ अप्लॉज.
0: ये मुझे लगता है बनेगा स्वस्थ इंडिया से बनेगा मस्त इंडिया हो रहा है, क्योंकि हमारा भविष्य गाकर गया अभी सामने हमारे.
1: बिल्कुल सही कहा आपने.
0: नमस्कार, स्वागत है आप सबका. आज 2 अक्टूबर है, बापू का जन्मदिन है, वो इंसान जिन्होंने कहा था कि स्वच्छता आजादी से भी ज्यादा जरूरी है. और आज इसी दिन हम एक ऐसी कहानी का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो है पिछले 12 साल से लिखी जा रही है.
1: बिल्कुल सही आयुष्मान. वेलकम टू सीजन 13 ऑफ द एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन. नाउ मोस्ट कैंपेन्स कम एंड गो. आयुष्मान एक स्लोगन होता है, एक सीजन होता है, और फिर सब भूल जाते हैं. बट दिस वन हैज स्टेड, क्योंकि बदलाव एक दिन का इवेंट नहीं होता, बदलाव एक आदत है. एंड हैबिट्स ऑब्वियसली टेक टाइम. 13 years आयुष्मान इज व्हाट इट हैज टेकन टू टर्न एन आइडिया इनटू अ वे ऑफ लाइफ. और आयुष्मान ये सफर जब शुरू हुआ था, एक सिंपल से सवाल से शुरू हुआ था कि क्या हमारा देश भारत साफ हो सकता है.
0: और फिर इसका जवाब दिया आप लोगों ने, गांव की उन माओं ने जिन्होंने घर में टॉयलेट की मांग की, उन टीचर्स ने जिन्होंने क्लासरूम को बदलाव की पहली प्रयोगशाला बना दिया, उन बच्चों ने जो घर जाकर अपने पेरेंट्स को समझाने लगे, उन आशा वर्कर्स, सरपंचों और सैनिटेशन वर्कर्स ने जिनके बिना ये कहानी अधूरी है. मैं हमेशा उन कहानियों की तरफ खींचा गया हूं जिन पर लोग बात करने से कतराते हैं, चाहे टॉयलेट्स की बात हो, पीरियड्स, हाइजीन. ये कैंपेन भी वही करता है. इट स्टार्ट्स द कॉन्वर्सेशन India needs to have. We have a long way to go and we need to keep at it.
1: We do have a long way to go and we are keeping at it. Aishman, jaise COVID pandemic se puri duniya ne sikha ki swachh aur swasth dono saath hain. Humne dekha ki hygiene akela sirf kaafi nahi hai. Health obviously is the bigger picture. Aur isliye banega swachh India banega swasth India. Swachhta pehla kadam tha, swasthya manzil hai. Giving better health in more hands every day.
0: Yes, better health, क्योंकि अच्छी सेहत किसी का प्रिविलेज नहीं है, हर हिंदुस्तानी का हक है. In more hands, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर्स या सरकार की नहीं, ये एक टीचर के हाथों में है, एक माँ के हाथों में है, एक बच्चे के हाथों में है, और हाँ, आपके हाथों में है, क्योंकि एवरी डे, क्योंकि सेहत एक दिन का जश्न नहीं है, रोज की आदत है, क्योंकि अब

0: वक्त है कहने का, आई एम द चेंज.
1: एब्सोल्युटली आई एम द चेंज. और आपने बिल्कुल सही कहा, इट बिगिंस विद आई एम द चेंज, जो आपने बिल्कुल कहा. But over the last 12 years, I believe has turned into a movement. So let's take a quick look at the journey that has brought us all here together.
2: पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, फिट इंडिया क्लीन इंडिया.

0: What we just saw was only a glimpse of an incredible 12-year journey. And as we begin a new chapter, the launch of season 13, I would like to welcome three leaders who've played an important role in taking this vision forward. Joining us virtually is Chris Litt, Chief Executive Officer, Reckitt. Joining us here, we have Gaurav Jain, Executive Vice President, Regional Director, Reckitt South Asia. We also have with us Rahul Kaval, CEO and Editor-in-Chief, NDTV. And we have with us Sonu Sood, actor, producer and philanthropist, someone who's been on the campaign early and an integral part of it. Thank you all so much for joining us today. But before we go any further, we have a special message from the health minister of our country.
1: Mahatma Gandhi ji ki jayanti ke pavan avsar par banega swasth India ke 13th season ke shubharambh par आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 12 सीजन से बनेगा स्वस्थ इंडिया देश में स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, जन जागरूकता का संदेश जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस अभियान ने स्वच्छता कर्मियों के प्रशिक्षण से लेकर बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने तक अनेक सार्थक प्रयास किए हैं। मुझे गर्व है कि आज़ादी के दशकों बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लाल किले के प्राचीर से स्वच्छ भारत का आह्वान दिया और स्वच्छता के महत्व को समझाया। उनके नेतृत्व में शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान आज एक सशक्त जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष का थीम बेहतर स्वास्थ्य ज्यादा हाथों में मुझे अत्यंत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तम नेतृत्व में देश ने स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। 11 करोड़ से अधिक शौचालय निर्मित किए गए, 12 करोड़ से अधिक घरों तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाया गया, जहां पीढ़ियों से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों के निवास स्थान के निकट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। आयुष्मान भारत जो योजना है वो 61 करोड़ से अधिक नागरिकों को बीमारी के आर्थिक भार से सुरक्षा प्रदान कर रही है। यह संख्या यूरोपीय संघ के देशों की कुल आबादी से अधिक है। व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर नेटवर्क के माध्यम से 12 आवश्यक हेल्थ पैकेज दिए जा रहे हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान की वजह से भारत में हर साल सामने आने वाले टीबी के नए मामलों में 21% की कमी आई है और टीबी से होने वाली मौतों में 28% की गिरावट दर्ज की गई है। अपने दूरदर्शी नेतृत्व से प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों भारतीयों को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है कि स्वस्थ समाज का लक्ष्य स्वस्थ सुविधाओं के विस्तार से और जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर प्राप्त किया जा सकता है। बनेगा स्वस्थ इंडिया अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। एक स्वस्थ और जागरूक नागरिक ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है। स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज और स्वस्थ भारत, यही विकसित भारत की मजबूत नींव है। मैं बनेगा स्वस्थ इंडिया की पूरी टीम को इसके लिए और उनके सहयोगी संस्थानों को 13वीं सीजन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए महात्मा गांधी जी के स्वच्छता और स्वस्थ समाज के सपने को साकार करने के लिए हम सब मिलकर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और विकसित भारत का संकल्प लें। जय हिंद।
2: बहुत बहुत शुक्रिया नड्डा जी। कहीं ना कहीं सरकार का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के मिशन में प्राइवेट कंपनियां जुड़ती हैं, मीडिया जुड़ता है, लेकिन साथ ही साथ जब सरकार की ताकत लगती है तभी वाकई में ज़मीन पर इसका असर दिखता है। इट्स फैंटास्टिक टू बी हियर। I want to go across to Chris Lacy of Reckitt Globally. Thank you very much, Chris, for joining us. And thank you for partnering with NDTV in this very important mission. We're broadcasting live across a country of 1.4 billion people. And your organization's core mission has been better health in more hands every day. But every day is a massive logistical and behavioral hurdle. As viewers watch this telethon, how does Reckitt ensure that basic wellness doesn't remain a luxury for the urban and richest people all across the country, especially in those parts where they need it the most?
3: Well, the question for us is not how we reach 1.4 billion people once, but actually how healthier choices can become part of everyday life for 1.4 billion people. That's a fundamentally different challenge. At Reckitt, we've learned that improving health at scale requires three things. The first thing is access. Better health cannot depend on where you live or what you earn. It requires solutions that are affordable, available, and relevant across diverse communities, say from major cities to the most remote parts of the country. The second element is trust. Sustainable behavior changes happen through healthcare workers, those at the front line, and the leaders in the community who all play a critical role turning health information into action and action into habits. And at Reckitt, we're guided by the simple principle, doing the right thing always. That trust is not built through what we say, it is earned through consistent action, long-term commitment, and delivering meaningful outcomes for communities. And then the third element is prevention. The greatest public health impact comes when we help people stay healthy, not just treat illness. That's why we focus on embedding early healthy behaviors, particularly among children, where small interventions can create lifelong benefits and actually also influence entire families. So ultimately, it takes all those three components to be successful in this mission.
2: 30 million children reached, lakhs of schools impacted across the country. But the question is about outcome. It's not just about outreach. How do you ensure that the outreach that you're being able to deliver is actually leading to measurable outcome, which I know is extremely important for you?
4: I think I would start by saying that as a company, what makes us very different is our result orientation. And we are completely obsessed about results in our daily job. So we don't do things which look fashionable but are not yielding the results. And that's like a philosophy that we have. And we pass on that philosophy to BSI. So whatever results, I mean, I'll tell you some, and you know many of them, is all audited. It's third-party audited, so it's not bunkum or bullshit, which a lot of people might believe. And then we work with very smart people in the government. And I don't think Rahul will be sitting here after 13 years if we didn't have results to show, and all these state governments and central government helping us to extend our programs, that wouldn't have happened. So I think on our first program of the school hygiene curriculum, which has been our longest running, I can tell you results on how hand washing has changed over years and how proper hand washing has happened. But the one metric we look at is absenteeism. School absenteeism, when we started in 2017, was about 36%. In 8 years, it's come down to 20%. Now, that huge difference on this large scale is basically because of two things. One is reduction in diarrhea and pneumonia, which are hand-borne diseases. And so that's a big thing that we track. On our Durex program, we basically track the knowledge that these kids get on condom use and on sexually transmitted diseases. Do they have the knowledge to help prevent that? When we started, that knowledge, the way we track it, was less than 2%. Today, it's gone up to 25%. And what we know from global studies on this subject is that this knowledge is extremely correlated very highly to when they get older and sexually active, to reduction in teen pregnancies and reduction in STIs. So that's something we track. I think we have this program of self-care. We launched it 4 years back. We tested it in 2 districts. And the aim there was to reduce mortality deaths from 0 to 2 years to zero. I think we did that. So we did it for 3 years. We made deaths zero in those 2 districts. The previous 3 years, the number of deaths in those districts was about 1,300. So in some way, you can say we stopped or avoided 1,300 deaths. And now we have taken that to 22 districts in the country, and we hope to achieve the same. On our World Toilet College, we now have 6 of them. We have 25 cities covered. We have trained about 2.5 lakh sanitation workers. We have 90% placement rate, so we get them occupations in, say, hospitals, clinics, hotels, a much better way of living. And we also get them government schemes. So Ayushman Bharat, the Ujjwala scheme, insurance schemes, which they didn't have access to earlier. And what we are trying to do there is reduce that life expectancy cap that we have in sanitation workers with the rest of India. That's a big 10 years.
2: Suno, aap jo logon ki madad karte hain, usse ek alag aapki image banti hai over and beyond just being a star and a famous personality. Are you also trying to encourage others to come? Because A, aapki dekha dekhi koi lag jaye, kaam mein jud jaye. Dusra ye ki aapko lage ki nahi, waqai mein Bollywood ke ya sports stars ho, film stars ho, OTT stars ho, sabko lagna chahiye ki fir ek Sonu Sood nahi, 10-12 ho jate. Aap kaise tay karte ki, kyunki itne logon ko madad chahiye, aap kaise tay karte ki kiski madad kar sakte hain, kiski nahi, aur kisko chhod de nahi kar paye.
5: इतने सालों में राहुल, एक मुझे लगता है ना, हमारे अंदर एक ऐसा एक्सरे मशीन लग जाता है कि जैसे हम लोग बात करने लगते हैं तो हमें पता होता है कि ये कितना जेन्युइन केस है. आज भी मेरे ऑफिस या घर के सामने 200-300 लोग पहुंचते ही हैं, और मैं जब शाम को निकलता हूं तो उनसे जब मिलते हैं तो किसी की मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, किसी के एजुकेशन का प्रॉब्लम होता है. बट पिछले 6-7 सालों के अंदर एक नेटवर्क ऐसा बन गया है कि पूरे देश भर में छोटे छोटे जिलों के अंदर भी जहाँ पर किसी को पढ़ाई करनी हो, इलाज करवाना हो, बेड चाहिए, सो फ़ोन करते हैं, जुड़ जाता है. कोविड के दौरान करीबन 7.5 लाख लोगों से मैं कनेक्ट हुआ था जिनको घर भेजा था.

0: तो बड़ी छोटी सी एग्जांपल्स होती हैं। आज आज जब मैं सुबह यहाँ पर आ रहा था, तो मैं जब सुबह उठा तो मुझे 5:30 बजे मेरा फ़ोन बजा, मैं उठने ही वाला था, तो मैंने देखा कि एक किसी को कॉल आ रहा है। मैंने फ़ोन किया तो कहते सर मेरा भाई का जो बेटा है वो PGI लखनऊ के बाहर है, उसको एडमिशन नहीं मिल रही और बहुत सीरियस है, आप कीजिए। तो मैंने मैसेज डाला वहाँ पे डॉक्टर्स को, तो 6:15 बजे मुझे फ़ोन आ गया और बाय द टाइम आई वॉज कमिंग फ्रॉम माई हाउस टू दिस प्लेस उसका एडमिशन हो गया था एंड फाइनली ही इज़ गेटिंग ट्रीटेड। सो मकसद ये है कि शायद ऊपर वाला चुन लेता है कि ये कुछ कर दीजिए और फिर हो जाएगा, एंड दैट दैट मेक्स योर डे वेरी स्पेशल। तो आई फील अपने आप हो जाता है, पता नहीं, बट आई एक बड़ा बिगेस्ट लेसन दैट आई लर्न इन ऑल दीज ईयर्स इज कि यू नो आप फेवर्स लेने में कतराए मत। यू नो मैंने अगर आपको एक फोन किया कि राहुल चलिए मिलके हम उसकी पढ़ाई करा देते हैं, आप
1: पैसा मत
0: उसका
1: मांगना बस, पैसा नहीं है और कुछ हो तो बताइए क्या
0: मतलब। या उसको चैनल में कहीं जॉब लगवा दे, या अगर वो डिजर्व करता है, अगर वो डिजर्व करता है वो पहले है तो फिर यू नो
2: पैसा मांगना किसी ये दुनिया मुश्किल है।
0: सो आइडिया ये है कि आप भी जानते हैं कि आप मैं उनको बोलता हूँ कि भैया देखिए मैं इसको कभी जानता नहीं, मिला नहीं हूँ, लेकिन देख लीजिए अगर वो डिजर्व करता है। और कई बार ऐसे हो जाता है कि यू नो अपने आप वो डॉट्स जुड़ जाते हैं और वो इंसान अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता है। सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू, आई ट्राई टू जॉइन दोस डॉट्स एवरी सिंगल डे एंड समवेयर गॉड इज डूइंग द ट्रिक।
3: गेट रेडी फॉर समथिंग रियली एक्साइटिंग, स्ट्रेंथ, बैलेंस और इनक्रेडिबल मूव्स का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन, मलखम्ब।

दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित, अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।

0: They were being detained on board the flight. This unfolded amid the detention, with passengers openly expressing their anger. Here's a full sequence of events, the video. Have a look.
1: भारत माता की जय
2: राजस्थान के एनएसए यूएनए जो लगाना है लगा दो जो लगाना है लगा दो जो लगाना है लगा दो आई एम नॉट अफ्रेड
0: A scuffle broke out during a CJP protest in Delhi, with multiple police personnel injured in the clash. Visuals from the spot show police trying to control the situation as the protest turned chaotic. Police personnel were seen in a scuffle with protesters, while some CJP supporters were detained. Women police personnel were also among those injured. The incident has left several policemen hurt, with the visuals capturing the clash and the police response during the protest.
3: क्या हुआ उतने देर में और क्या सिचुएशन थी यहाँ पे?
4: बस एक बजे के करीब भीड़ आई है उधर से गुरुद्वारा काबगंज की तरफ से इम्तियाज खान मार्ग पर, और वो शाउटिंग कर रहे थे और गाली गलौज दे रहे थे, है ना, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज भी यूज कर रहे थे, जो हमने किसी तरह वो बैरिगेट पे चढ़ाई की उसको तोड़ने लग गए, है नी। फिर हमने जो है ना वारिश पे मैसेज किया, री इन्फोर्समेंट आई है यहाँ, कम से कम 15-20 मिनट संघर्ष चला है, रोड ब्लॉक करने की कोशिश की, आम पब्लिक को परेशानी हो रही थी, लेकिन हमने वो नहीं होने दी।
3: सर, आप लोगों को चोट भी आई है इस पूरे ऑल्टरकेशन में?
4: उंगलियां सूजी हुई है ना, ये उंगलियों पे चोट लगी है, बैरिगेट भी गिर गए थे हमारे, है नी। लेकिन उसके बाद ही हमने अपना पेशेंस नहीं खोया और उनको प्रॉपर तरीके से, इवन वो बैरिगेट पे चढ़ गए थे, उन्होंने वो हमें लाते मार रहे थे, लेकिन हमने उनको उतारा कि भाई इनको कोई चोट ना लग जाए, ऐसी इंजरी ना लग जाए, है कि नहीं, जिससे इनकी लाइफ को कोई खतरा हो जाए।
5: लोगों ने आपको हाथ मरोड़ा, क्या वो आप बाद में पकड़े गए या निकल गए थे वहाँ से?
6: सर, डिटेन तो किया है, अब मुझे ये नहीं पता था कि भी वो भीड़ में इतना नहीं पहचान सकती कौन सी लड़की थी वो, पर भीड़ में चोट लग गई थी मुझे उसी टाइम, उन्होंने हाथ हो गया था।
5: लगातार दिखने में आ रहा है कि जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, कितना मुश्किल और चैलेंजिंग हो रहा है इस दौरान ड्यूटी करना?
6: सर, ड्यूटी तो देखो हम अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं पाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे, तब भी हमें अपनी ड्यूटी तो करनी है। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई हमें ऐसे हमारे साथ ऐसी बदसलूकी ना करें, क्योंकि हम भी अपना परिवार भी संभाल रहे हैं, अपने ड्यूटी भी कर रहे हैं, किसी को उल्टा भी नहीं बोला हमने प्रोटेस्ट में, यही कहा कि भी यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखें।
7: अकेला था, मैं एक ही आदमी को रोक रहा था, लेकिन उसने मेरे को धक्का दे के, मेरे ये हाथ पे चोट लगी और कमर पे लगी हुई है, हमारी यहाँ जरूरत है, इसलिए मैं अभी हॉस्पिटल नहीं गया, लेकिन अब मैं
8: जाने तब तक डटे हुए जब तक, हालांकि चोट खा के भी आप डटे
7: हैं, बिल्कुल डटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमारी जरूरत है।
0: We'll continue to track this story and much more here on NDTV. For now, slipping into a very short break.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित अनसुलझी बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
2: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
3: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
4: एक परिवार, अटूट भरोसा।
0: द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस डीकोड अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स। डॉक्टर स्वर्णिम वागले, जनरल डेविड पेट्रियस, स्वामी सर्वप्रियानंदा, माइक वॉल्श, निकोलस बक्स एंड द एनडीटीवी वर्ल्ड समिट, अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, 22nd एंड 23rd अक्टूबर, ओनली ऑन एनडीटीवी। After a smashing start, the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
5: Welcome to the second edition of the NDTV World India Japan Summit.
6: Deep localization. What does it essentially mean for Maruti Suzuki?
7: To be competitive and to be agile for development and the resilience to any disruption. So that's how we set this deep localization as our next challenge.
8: How do you see the India-US relationship prosper?
9: I think what was an important basis. When people talk about God, they forget that it was an economic bond.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
3: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेंको गहने।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है।

0: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
1: एक परिवार अटूट भरोसा।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
2: यू नो डिजाइन्स कितने हैं?
3: लाख से भी ज्यादा डूड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
4: After a smashing start, the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
4: द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस, डीकोड अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स। डॉक्टर स्वर्णिम वागले, जनरल डेविड पेट्रियस, स्वामी सर्वप्रियानंदा, माइक वॉश, निकोलस बक्स, एंड द एनडीटीवी वर्ल्ड समिट, अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स। 22nd and 23rd October, only on NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: After a smashing start, the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
6: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस, डीकोड अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स। डॉक्टर स्वर्णिम वागले, जनरल डेविड पेट्रियस, स्वामी सर्वप्रियानंदा, माइक वॉश, निकोलस बक्स एंड द एनडीटीवी वर्ल्ड समिट, अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, 22nd and 23rd October, only on NDTV.
7: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
8: जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
5: एक नई दहलीज पर अनिश्चित, अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन, एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीकोड।

0: एक नई दहलीज पर अनिश्चित अनसुलझी बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।
1: यार लोन भूल गया
2: मैरी।
1: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक

0: he has totally blurred the lines between the Prime Minister's office and the ideology. If religion is a driving force in politics, he fueled it, drove it heartily along. As Prime Minister, the unabashed exhibition of cultural and religious identity began in 2014, when he performed the Ganga Aarti on the bustling ghats of Varanasi. The last 12 years are dotted with Kedarnath to Kanyakumari and Somnath to Pashupatinath in Nepal, to scores of temples, gurdwaras and monastery runs. Modi laid the foundation of the Ram Temple in Ayodhya in August 2020. In January 2024, he led the temple's Pran Pratishthan. He entered the new parliament building amidst chants of mantras on May 28, 2023, carrying the historic golden scepter, the Sengol. He changed the political turf, forcing the opposition and even Rahul Gandhi to walk on it, fight on it. The RSS wanted Article 370 off. He did it. Hindutva dog fizzles have since then become a regular. The latest being the full version of Vande Mataram getting legislative protection and the remarks that Uniform Civil Code is coming soon. The deeper signal is that Modi changed the politico-electoral vocabulary and he made the parent organization RSS change.
1: अच्छा difficult task है equilibrium बिठाना क्योंकि संघ की जो मूल भाव है उसमें व्यक्ति नहीं होता है.
2: बिल्कुल ठीक बात है.
1: ठीक है. एंड यहाँ एक आपका ही लीडर, आपके ही रैंक से निकला हुआ शख्स सोलर सिस्टम का सूर्य हो जाता है.
2: मगर मुझे लगता है कि सोलर सिस्टम के जो सब ग्रह हैं और जो सूर्य भी है, सबको अपनी मर्यादा मालूम है. मर्यादा से बाहर कोई नहीं जा रहा है.
1: लेकिन ये आप लोग ये देखते हैं, कभी ऐसा हुआ है? कभी एक समय आया था गुजरात के समय में जब कहा जाता था कि संघ इज फीलिंग नेग्लेक्टेड.
2: मुझे लगता है जो समन्वय बैठकें प्रारंभ हुई हैं संघ की, जो चल रही हैं पिछले कई वर्षों से, जिसकी बीच बीच में हर 6 महीने में एक बार होती है तो खबर भी बनती है. मुझे लगता है समन्वय बैठकों में जितने भी नोट्स एक्सचेंज होने होते हैं, क्योंकि उधर ये सब समाज क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी विविध संगठन हैं, ये सब समाज क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं. उधर सरकार के लोग भी आते हैं, जो सरकार में संघ के स्वयंसेवक हैं वो आते हैं, उनके साथ डिस्कशन होता है, नोट्स एक्सचेंज होते हैं. और जिस उसकी आप मतलब जो निग्लेक्ट फील करने वाला जो आप इशू मानते हैं, मुझे नहीं लगता आज की डेट में ऐसा कोई भाव है.
1: तो जो आपके दिनों में परिकल्पना थी एक नेता की और प्रधानमंत्री की, वो क्या नरेंद्र मोदी फिट्स दैट?
2: मुझे लगता है यस, नरेंद्र मोदी फिट्स दैट. बट प्रॉबेबली समाज की आवश्यकताएं, देश की आवश्यकताएं, वैश्विक परिस्थितियां, ये सब जब बदलती हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है, बिकॉज यू नो नथिंग इज़ परमानेंट. तो आज मोदी जी हैं, पिछले 15 साल लगभग पूरे हो जाएंगे 2029 में, तो कभी ना कभी किसी ना किसी की रिप्लेसमेंट आनी है. तो मुझे लगता है कि जो अगली आएगी वो भी उनके लिए एक बेंचमार्किंग हो जाएगी कि यार इससे और बेटर करना है.
1: कैन अ सरसंचालक टेल प्राइम मिनिस्टर यू हैव मेड अ मिस्टेक?
2: व्हाई शुड सरसंघ चालक से दिस? देयर इज अ पर्सन हु इज हुज जॉब इज दिस
1: इनसाइड द पार्टी.
2: हाँ, इनसाइड पार्टी, आउट फ्रॉम द संघ ऑल्सो. आई टोल्ड यू कि संघ हर संगठन से कोऑर्डिनेट करने के लिए एक पालक एक अधिकारी देता है. वो जो पालक अधिकारी या संपर्क अधिकारी है, वो जहाँ उनको गलती ध्यान में आती है वो कन्वे करते हैं.
1: It happens.
2: And look at the other thing. सर संघ चालक जी और प्रधानमंत्री जी, सर संघ चालक जी के पिताजी प्रधानमंत्री जी के प्रांत प्रचारक रहे, एक कमरेडरी बनती है. सरसंघ चालक अपना प्रधानमंत्री जी और दत्ता जी दोनों ने विद्यार्थी परिषद में एक साथ काम किया. दत्ता जी इज नंबर 2 इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो लंबे समय तक काम किया दोनों ने एक साथ. तो वो एक वो उसका
1: ये अच्छा कोएलिशन बन गया है.
2: हाँ, शासन का एक अच्छा नियम भी वो भी है ना. और देखिए, मैं दूसरी बात ये भी कहता हूँ कि संघ के जो लोग, संघ के जो वरिष्ठ प्रचारक, संघ का जो पूरा ओवरऑल चलाता, तो नीचे स्वयंसेवक से लेकर के ऊपर अखिल भारतीय अधिकारी तक की सबकी इन्वॉल्वमेंट रहती है उसमें. परंतु तो भी संघ की जो टोली मान लीजिए, जिसमें पूजनीय सरसंघ चालक जी, सरकारें व तीन अपना पांचों सह सरकारें व और एक आध दो लोग मनमोहन जो एक आध दो वरिष्ठ लोग हैं वो, और तो वो वहां पर व्यक्ति नहीं है, दे आर रिप्रेजेंटिंग इंस्टीट्यूशन, दे आर रिप्रेजेंटिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनजीओ, दे आर रिप्रेजेंटिंग वंस वर्ल्ड्स लार्ज नॉट एनजीओ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वेयर दी फ्यू मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, फ्यू मिनिस्टर्स, फ्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर हैव कम आउट. सो देयर इज बाउंड टू बी, हमारे बहुत सारी बातें ध्यान में आती हैं, वो कन्वे होती हैं, मगर एक कैविट के साथ होती हैं कि आप इसमें से जितना कर पाएं, क्योंकि जहां आप बैठे हो वहां का आपको मालूम है, हमें नहीं मालूम. तो आप उसमें से जितना उस हिसाब से कर पाएं आप इसको इम्प्लीमेंट करें
1: यथाशक्ति. एक बड़ा रिस्क है आरएसएस के लिए, इतना बड़ा संगठन, वो अपनी पूरी एनर्जी, एफर्ट, इन्वेस्टमेंट एक आदमी की जेब में डाल देता है, अ प्राइम मिनिस्टर. इट डज, रिस्की काम है.
2: नहीं, रिस्की काम मुझे नहीं लगता, क्योंकि रिस्की काम है. आपको क्या लगता है, एक प्रधानमंत्री को निर्णय लेता तो अकेला थोड़ा ना कर लेता प्रधानमंत्री भी निर्णय. कोई भी एक निर्णय, आप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने परिवार में, फॉर दैट सेक, आप एक कोई भी एक निर्णय अपने आप कर लेते हो क्या? और हमारे यार मतलब कोई एक दायित्व पर एक कार्यकर्ता रहता है, हमें लगता है यार इसने इतना बड़ा काम खड़ा कर दिया, इसकी रिप्लेसमेंट कैसे होगी, मगर जो दूसरा आता है वो उससे वहाँ से आगे लेके चलता है, तभी तो इतना बड़े हुए पिछले 100 साल में.
1: क्योंकि एक समय आया था जब सुदर्शन जी को बोलना चाहिए था दैट पीपल लाइक अडवाणी एंड वाजपेयी शुड रिटायर.
2: दैट वाज इन 2000 प्रोबेबली 2003 और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट.
1: तो यानी तब क्या हुआ था?
2: उस समय तो मैंने वही बोला ना, गलतियों से सीखा. उस समय दत्तोपन ठेंगड़ी की भी स्टेटमेंट थी, अर्थमंत्री नहीं अनर्थमंत्री है. तो उस समय ये भी था, उस समय अशोक सिंघल जी का आपने बताया बहुत नाराज हुए थे,
1: बहुत नाराज हुए
2: 1989 में, और अशोक सिंघल जी तब से लेकर लगभग
1: एक दैट वाज 2003
2: वो उस समय वो भी नाराज हुए थे. तो
1: वो शिलादान था.
2: हाँ, वो उसके बाद से जो है वो संघ ने भी सीखा. मैंने बताया यार कि एक गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो वो दोबारा नहीं होगी ना जो उस समय हो गई.
0: द आइडियोलॉजिकल ड्रिलिंग बाय आरएसएस एंड बीजेपी वाज ट्राइड इन द पास्ट. But it didn't really break the rock because the Hindu monolith depended on coalition governments, undelivered promises, empty stomachs, and very angry minds. Modi had an advantage. He entered electoral politics in 2001. At 51, at that time, he had spent almost 3 decades as an RSS activist, traveling across India's diverse, complex landscape, and learned what people want. The Sarkari bottlenecks, what clicks among the voters. That is why as CM and later as PM, he has launched big ticket welfare schemes. One time fix for old problems. Today, let's for example see, there are 740 fully funded and managed central welfare schemes. 26 central flagship schemes. Governments in the past have launched welfare schemes, but schemes faltered. They didn't create votes. Modi changed that. He went direct in the distribution of the benefits, removed the intermediaries, used technology. Till date, approximately 4.5 lakh crore has been saved by the central government by plugging leakages in government schemes. He leaned on the bureaucracy. He monitored the Sarkari implementation. But there were 2 standout elements about what Modi was doing as Prime Minister or as Chief Minister earlier. One, he put his weight behind each and every scheme. He owned them. He announced them even from the Red Fort.
3: Swachh Bharat ka ek abhiyan isi 2 October se mujhe aarambh karna hai.
0: Second, he added the cultural spin to schemes. Names of schemes were drawn from the Hindu vocabulary, not some random name. Jandhan, Ayushman, Vande Bharat, Atal Setu are examples. Names that sound respecting the beneficiary, all reaching millions of households with a Modi face. A direct patron-client bond, bypassing state governments totally.

0: The political face-off over the opposition's protests has intensified, with the Congress accusing the Modi government of attacking democracy and imposing an undeclared emergency. Rahul Gandhi has alleged vote theft and election theft, and also a crackdown on protesting youth. Priyanka Gandhi Vadra has accused the government of illegally detaining MPs and protesters and shutting down Delhi. BJP has hit back, accusing the opposition of trying to create anarchy and destabilize the country. After electoral defeats, it says governance cannot be dictated from the streets and has challenged Rahul Gandhi over his allegation. Opposition is demanding accountability from the Election Commission, with INDIA bloc planning another protest march on Monday.
1: आज जो दिन भर से चला है और इसके पहले तीन दिन जो चला है, उससे दो बातें साफ साफ आई हैं. इंडियन डेमोक्रेसी हैज डिस्ट्रॉयड द क्वेस्ट फॉर एनार्की.
2: मोगैम्बो मोदी इज डिस्ट्रॉइंग इंडियाज डेमोक्रेसी.
3: जस्ट बाय कैरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यू डू नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. Your behavior and your actions speak for your respect for the Constitution. Mr. Rahul Gandhi and his family and the members of his party, from the president downwards, need to apologize.
4: इस थाने में मुश्किल से 15-20 पुलिस वाले भी नहीं है और बाहर कई सौ लोग हैं. मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, आपके थाने कम पड़ जाएंगे. इतने लोगों को कहाँ गिरफ्तार करोगे, आपके कहाँ आप लोगों को कंट्रोल करोगे. आप लोगों से पंगा लेना बंद करो, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा ले लो, वोट चोरी करना बंद करो. अगर आपने पंगा ले लिया, देश के युवा जिस दिन सड़कों पर उतर गए और उतर रहे हैं, अब बहुत जबरदस्त तरीके से उतर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा.
5: आज पूरी तरह से ये कौन लोग हैं जिनको जनता ने नकार दिया, चाहे वो राहुल गांधी के इंडी गठबंधन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो और उनका सीजेपी हो. जनता ने जब इनको नकार दिया, लोकतंत्र ने इनको सजा दी, तो उस सजा को पचाने के, उससे सीखने के बजाय आपने इस देश को अस्थिर करने का मंसूबा बना दिया.
6: आई नेवर यूज्ड दिस प्रिजन वैन, इट इज फॉर द क्रिमिनल्स एंड द वांटेड पीपल और अनवांटेड पीपल.
7: Criminal, like criminal.
6: Just criminals. We lock up everything. So, a protest. So, with this protest, we have started dharna from here. Until unless our kidnapping time is end.
0: And a protest planned in the national capital has triggered a major face-off, with the CJP alleging a crackdown on its Delhi Chalo march. Three CJP leaders, Abhijit Deepke, Saurav Das and Ashutosh Ranka, were detained after arriving in Delhi. They were reportedly taken to separate locations in Delhi, Gurugram and Dwarka. Deepke accused the authorities of dictatorship, alleging that Delhi police boarded his flight to detain him and other party leaders. CJP has vowed not to back down. In a statement, the party said its nationwide agitation would continue with or without its leaders, reiterating its demand for CEC Gyanesh Kumar to go. Police also detained protesters at several locations across Delhi, including Jantar Mantar, Connaught Place, as the march faced resistance from the police authorities. Send them out of the country, shame on you. These were the angry words that the passengers directed at the CJP leaders as they were being detained on board the flight. Have a look at this video.
8: भारत माता की जय.
9: शेम ऑन यू.
10: राजस्थान के एनएसए यूएनआई जो लगाना है लगा दो. आई एम नॉट अफ्रेड.
11: कचरा सा स्वच्छ भारत अभियान.
12: 2 मिनट प्लीज.
0: YouTuber Dhruv Rathi has been detained ahead of CJP's Jantar Mantar Chalo call. Rathi, who lives in Germany, had arrived in India a few days ago. He had posted a video from India Gate calling for action against CC Gyanesh Kumar. Sources tell NDTV Rathi was detained from his residence in Sector 56, Gurugram. They've also issued a statement, CJP, condemning Rathi's detention. They've demanded his immediate and unconditional release. A scuffle broke out during a CJP protest in Delhi with multiple police personnel injured in the clash. Visuals from the spot show police trying to control the situation as the protests turned chaotic. Police personnel were seen in a scuffle with protesters while some CJP supporters were detained. Stone pelting was also reported during the protests at Connaught Place. Visuals show protesters hurling stones at police personnel with mass protesters also seen carrying sticks. Women police personnel were also among those injured. The incident has left several policemen hurt, with the visuals capturing the clash and the police response during the protest.
11: क्या हुआ उतने देर में और क्या सिचुएशन थी यहाँ पे?
12: बस एक बजे के करीब भीड़ आई है उधर से गुरुद्वारा काबगंज की तरफ से इम्तियाज खान मार्ग पर, और वो शाउटिंग कर रहे थे और गाली गलौज दे रहे थे, है ना, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज भी यूज कर रहे थे, जो हमने किसी तरह वो बैरिगेट पे चढ़ाई की उसको तोड़ने लग गए, है नी। फिर हमने जो है ना वारिस पे मैसेज किया, री इन्फोर्समेंट आई है यहाँ, कम से कम 15-20 मिनट संघर्ष चला है, रोड ब्लॉक करने की कोशिश की, आम पब्लिक को परेशानी हो रही थी लेकिन हमने वो नहीं होने दी।
11: सर, आप लोगों को चोट भी आई है इस पूरे अल्टरकेशन में?
12: उंगलियां सूजी हुई है, ना, ये उंगलियों पे चोट लगी है, बैरिगेट भी गिर गए थे हमारे, है नी। लेकिन उसके बाद ही हमने अपना पेशेंस नहीं खोया और उनको प्रॉपर तरीके से, इवन वो बैरिगेट पे चढ़ गए थे, उन्होंने वो हमें लाते मार रहे थे लेकिन हमने उनको उतारा कि भाई इनको कोई चोट ना लग जाए, ऐसी इंजरी ना लग जाए, है कि नहीं, जिससे इनकी लाइफ को कोई खतरा हो जाए।
13: ने आपको हाथ मरोड़ा, क्या वो आप बाद में पकड़े गए या निकल गए थे वहाँ?
14: सर, डिटेन तो किया है, अब मुझे ये नहीं पता था कि भाई वो भीड़ में इतना नहीं पहचान सकती कौन सी लड़की थी वो, पर भीड़ में चोट लग गई थी मुझे उसी टाइम, उन्होंने हाथ हो गया था।
13: लगातार दिखने में आ रहा है कि जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, कितना मुश्किल और चैलेंजिंग हो रहा है इस दौरान ड्यूटी करना?
14: सर, ड्यूटी तो देखो हम अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे तब भी हमें अपनी ड्यूटी तो करनी है, लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई हमें ऐसे हमारे साथ ऐसी बदसलूकी ना करें, क्योंकि हम भी अपना परिवार भी संभाल रहे हैं, अपने ड्यूटी भी कर रहे हैं, किसी को उल्टा भी नहीं बोला हमने प्रोटेस्ट में, यही कहा कि भाई यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखें।

0: तरह से वेलकम किया गया है, हम समझते हैं ये अच्छे संकेत हैं पूरे इंडिया गठबंधन के लिए, पूरे देश के लिए।
1: बीजेपी आर प्रोटेस्टिंग हियर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन चेन्नई, दे वर अरेस्टेड एंड व्हाट इज मिस्टर राहुल गांधी'स स्टेटमेंट, इज देयर इज द कांग्रेस पार्टी अगेंस्ट इट? व्हेन मिस्टर राहुल गांधी वाज प्रोटेस्टिंग इन दिल्ली, दीस पीपल सेड ओ यू शुड सपोर्ट राहुल गांधी, यू शुड नॉट हैव नैरो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, you should think of the larger common good. Now why they are not saying anything about this thing? The TVK government has had a crackdown on the police on the protesters, and the RMPs were present there and ensured that those people were arrested, released. The persons arrested were released, and in the representation given to the president, they have mentioned every other state except the state of Tamil Nadu and Kerala.
2: Ayodhya has emerged as a political flashpoint in Uttar Pradesh with BJP's Ram Temple narrative and the opposition's electoral challenge back in focus. Ayodhya's symbolic importance has placed it at the center of BJP's Hindutva politics, making it a key battleground in the state's political contest. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has challenged Chief Minister Yogi Adityanath to contest from Ayodhya, questioning BJP's confidence in its political stronghold. Akhilesh has accused the BJP of treating Ayodhya's residents unfairly, bringing local grievances into political debate. Yogi Adityanath referred to Akhilesh's challenge to contest from Ayodhya and responded with a counter. He proposed that both leaders file their nominations from Ayodhya and test their political fortunes.
3: बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं, तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं। और दूध का दूध पानी का पानी करने का झूठा वादा करने वाले का पानी जनता उतार देगी इस बार।
4: आज वो अयोध्या एक बार फिर से राम राज्य के नए उदाहरण बनकर के त्रेता युग का स्मरण करा रही है, और मैं तो आपको ऑफर करता हूं, आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं। तय हो जाए, आप भी आइए और मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों? लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए, और उसके लिए मैं कह रहा हूं आइए आप भी।
2: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.
5: दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित, अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली। Sharpest global voices decode a world between orders. Dr. Swarnim Wagle, General David Petraeus, Swami Sarvapriyananda, Mike Walsh, Nicholas Butts, at the NDTV World Summit, a world between orders, 22nd and 23rd October, only on NDTV. After a smashing start, the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
6: Welcome to the second edition of the NDTV World India Japan Summit.
7: Deep localization. What does it essentially mean?

0: The political face-off over the opposition's protests has intensified, with the Congress accusing the Modi government of attacking democracy and imposing an undeclared emergency. Rahul Gandhi has alleged vote theft and election theft, and also a crackdown on protesting youth. Priyanka Gandhi Vadra has accused the government of illegally detaining MPs and protesters and shutting down Delhi. BJP has hit back, accusing the opposition of trying to create anarchy and destabilize the country after electoral defeats. It says governance cannot be dictated from the streets and has challenged Rahul Gandhi over his allegation. Opposition is demanding accountability from the Election Commission, with INDIA bloc planning another protest march on Monday.
1: और इसके पहले तीन दिन जो चला है, उससे दो बातें साफ साफ आई हैं. इंडियन डेमोक्रेसी हैज डिस्ट्रॉयड द क्वेस्ट फॉर एनार्की.
2: मोगैम्बो मोदी इज डिस्ट्रॉइंग इंडियाज डेमोक्रेसी.
3: जस्ट बाय कैरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यू डू नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. Your behavior and your actions speak for your respect for the Constitution. Mr. Rahul Gandhi and his family and the members of his party, from the president downwards, need to apologize.
4: इस थाने में मुश्किल से 15-20 पुलिस वाले भी नहीं हैं, और जहां बाहर कई सौ लोग हैं. मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, आपके थाने कम पड़ जाएंगे. इतने लोगों को कहाँ गिरफ्तार करोगे, आपके कहाँ आप लोगों को कंट्रोल करोगे. आप लोगों से पंगा लेना बंद करो, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा ले लो, वोट चोरी करना बंद करो. अगर आपने पंगा ले लिया, देश के युवा जिस दिन सड़कों पे उतर गए, और उतर रहे हैं अब बहुत जबरदस्त तरीके से उतर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा.
5: आज पूरी तरह से ये कौन लोग हैं जिनको जनता ने नकार दिया, चाहे वो राहुल गांधी के इंडी गठबंधन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो और उनका सीजेपी हो. जनता ने जब इनको नकार दिया, लोकतंत्र ने इनको सजा दी, तो उस सजा को पचाने के, उससे सीखने के बजाय आपने इस देश को अस्थिर करने का मंसूबा बना दिया.
6: आई नेवर यूज्ड दिस प्रिजन हैंड. इट इज फॉर द क्रिमिनल्स एंड द वांटेड पीपल और अनवांटेड पीपल.
7: Criminal, like criminal.
6: Just criminals. We lock up everything. So, a protest. So, with this protest, we have started dharna from here. Until unless our kidnapping time is end.
0: And a protest planned in the national capital has triggered a major face-off, with the CJP alleging a crackdown on its Delhi Chalo march. Three CJP leaders, Abhijit Deepke, Saurav Das and Ashutosh Ranka, were detained after arriving in Delhi. They were reportedly taken to separate locations in Delhi, Gurugram and Dwarka. Deepke accused the authorities of dictatorship, alleging that Delhi police boarded his flight to detain him and other party leaders. CJP has vowed not to back down. In a statement, the party said its nationwide agitation would continue with or without its leaders, reiterating its demand for CC Gyanesh Kumar to go. Police also detained protesters at several locations across Delhi, including Jantar Mantar, Connaught Place, as the march faced resistance from the police authorities. Send them out of the country, shame on you. These were the angry words that the passengers directed at the CJP leaders as they were being detained on board the flight. Have a look at this video.
8: भारत माता की जय.
9: शेम ऑन यू.
10: राजस्थान के एनएसए यूएनए जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो. आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड.
11: कचरा सा स्वच्छ भारत अभियान.
10: 2 मिनट प्लीज.
0: YouTuber Dhruv Rathi has been detained ahead of CJP's Jantar Mantar Chalo call. Rathi, who lives in Germany, had arrived in India a few days ago. He had posted a video from India Gate calling for action against CC Gyanesh Kumar. Sources tell NDTV Rathi was detained from his residence in Sector 56, Gurugram. They've also issued a statement, CJP, condemning Rathi's detention. They've demanded his immediate and unconditional release. A scuffle broke out during a CJP protest in Delhi with multiple police personnel injured in the clash. Visuals from the spot show police trying to control the situation as the protest turned chaotic. Police personnel were seen in a scuffle with protesters while some CJP supporters were detained. Stone pelting was also reported during the protests at Connaught Place. Visuals show protesters hurling stones at police personnel with mass protesters also seen carrying sticks. Women police personnel were also among those injured. The incident has left several policemen hurt, with the visuals capturing the clash and the police response during the protest.
11: क्या हुआ उतने देर में और क्या सिचुएशन थी यहाँ पे?
12: बस एक बजे के करीब भीड़ आई है उधर से गुरुद्वारा काबगंज की तरफ से इम्तियाज खान मार्ग पर, और वो शाउटिंग कर रहे थे और गाली गलौज दे रहे थे, है ना, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज भी यूज कर रहे थे, जो हमने किसी तरह वो बैरिगेट पे चढ़ाई की उसको तोड़ने लग गए, है नी। फिर हमने जो है ना वारिश पे मैसेज किया, री इन्फोर्समेंट आई है, यहाँ कम से कम 15-20 मिनट संघर्ष चला है, रोड ब्लॉक करने की कोशिश की, आम पब्लिक को परेशानी हो रही थी लेकिन हमने वो नहीं होने दी।
11: सर, आप लोगों को चोट भी आई है इस पूरे ऑल्टरकेशन में?
12: यहाँ सूजी हुई है ना, ये उंगलियों पे चोट लगी है, बैरिगेट भी गिर गए थे हमारे, है नी। लेकिन उसके बाद ही हमने अपना पेशेंस नहीं खोया और उनको प्रॉपर तरीके से, इवन वो बैरिगेट पे चढ़ गए थे, उन्होंने वो हमें लाते मार रहे थे लेकिन हमने उनको उतारा कि भाई इनको कोई चोट ना लग जाए, ऐसी इंजरी ना लग जाए,

0: Party leader A. Sarvanan launched an attack on Rahul Gandhi, questioning whether the LOP would answer tough questions. And he once again questioned Rahul Gandhi on selective outreach.
1: Definitely, and our Chief Minister, Mr. Vijay Sir, also followed by the common people interest. He will not adopted in the BJP RSS ideology. So that two leaders commonly, jointly together, they were discussing about the education system for the new system in India.
2: नहीं देखिए ये तो स्वाभाविक है क्योंकि हम लोगों का यहाँ अलायंस है और आप जानते हैं विजय कुमार जी और राहुल जी का एक रिश्ता है जो एक अलग सा है तो उन्होंने उनके घर पे मुलाकात की और फिर आपने देखा किस तरह से वो वेलकम किया गया है हम समझते हैं ये अच्छे संकेत हैं पूरे इंडिया गठबंधन के लिए पूरे देश के लिए
3: सीजेपी आर प्रोटेस्टिंग हियर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन चेन्नई दे वर अरेस्टेड एंड व्हाट इज मिस्टर राहुल गांधी स्टेटमेंट इज देयर इज द कांग्रेस पार्टी अगेंस्ट इट When Mr. Rahul Gandhi was protesting in Delhi, these people said, oh, you should support Rahul Gandhi. You should not have narrow political considerations. You should think of the larger common good. Now, why they are not saying anything about this thing? The TVK government has had a crackdown on the police, on the protesters, and the RMPs were present there and ensured that those people were arrested, released. The persons arrested were released and in the representation given to the president, they have mentioned every other state except the state of Tamil Nadu and Kerala.
0: Ayodhya has emerged as a political flashpoint in Uttar Pradesh with BJP's Ram Temple narrative and the opposition's electoral challenge back in focus. Ayodhya's symbolic importance has placed it at the center of BJP's Hindutva politics, making it a key battleground in the state's political contest. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has challenged Chief Minister Yogi Adityanath to contest from Ayodhya, questioning BJP's confidence in its political stronghold. Akhilesh has accused the BJP of treating Ayodhya's residents unfairly, bringing local grievances into political debate. Yogi Adityanath referred to Akhilesh's challenge to contest from Ayodhya and responded with a counter. He proposed that both leaders file their nominations from Ayodhya and test their political fortunes.
4: बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं, तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं और दूध का दूध पानी का पानी करने का झूठा वादा करने वाले का पानी जनता उतार देगी इस बार
5: आज वो अयोध्या एक बार फिर से राम राज्य के नए उदाहरण बनकर के त्रेता युग का स्मरण करा रही है और मैं तो आपको ऑफर करता हूं आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं तय हो जाए आप भी आइए और मैं भी आता हूं लड़ाई चेलों से क्यों लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए और उसके लिए मैं कह रहा हूं आइए आप भी
0: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.

एक नई दहलीज पर अनिश्चित अनसुलझी बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंत्र।

0: The political face-off over the opposition's protests has intensified, with the Congress accusing the Modi government of attacking democracy and imposing an undeclared emergency. Rahul Gandhi has alleged vote theft and election theft, and also a crackdown on protesting youth. Priyanka Gandhi Vadra has accused the government of illegally detaining MPs and protesters and shutting down Delhi. BJP has hit back, accusing the opposition of trying to create anarchy and destabilize the country. After electoral defeats, it says governance cannot be dictated from the streets and has challenged Rahul Gandhi over his allegation. Opposition is demanding accountability from the Election Commission, with INDIA bloc planning another protest march on Monday.
1: और इसके पहले तीन दिन जो चला है उससे दो बातें साफ साफ आई हैं. इंडियन डेमोक्रेसी हैज डिस्ट्रॉयड द क्वेस्ट फॉर एनार्की.
2: मोगैम्बो मोदी इज डिस्ट्रॉइंग इंडियाज डेमोक्रेसी.
3: जस्ट बाय कैरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यू डू नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. योर बिहेवियर and your actions speak for your respect for the constitution. Mr. Rahul Gandhi and his family and the members of his party from the president downwards need to apologize.
4: Is thane mein mushkil se 15-20 police wale bhi nahi hai aur bahar kai so log hain. Main Modi ji ko kehna chahta hu ki aapki jailen kam pad jayengi, aapke thane kam pad jayenge. Itne logon ko कहाँ गिरफ्तार करोगे, आपके कहाँ आप लोगों को कंट्रोल करोगे. आप लोगों से पंगा लेना बंद करो. ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा ले लो. वोट चोरी करना बंद करो. अगर आपने पंगा ले लिया देश के युवा जिस दिन सड़कों पे उतर गए और उतर रहे हैं, अब बहुत जबरदस्त तरीके से उतर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा.
5: आज पूरी तरह से ये कौन लोग हैं जिनको जनता ने नकार दिया, चाहे वो राहुल गांधी के इंडी गठबंधन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो और उनका सीजेपी हो. जनता ने जब इनको नकार दिया, लोकतंत्र ने इनको सजा दी, तो उस सजा को पचाने के, उससे सीखने के बजाय आपने इस देश को अस्थिर करने का मंसूबा बना दिया.
6: आई नेवर यूज्ड दिस प्रिजन हैंड. इट इज फॉर द क्रिमिनल्स एंड द वांटेड पीपल और अनवांटेड पीपल.
7: क्रिमिनल, लाइक क्रिमिनल,
6: जस्ट क्रिमिनल्स. We lock up everything. So, a protest. So, with this protest, we have started dharna from here. Until and unless our kidnapping time is end, we have started dharna.
0: And a protest planned in the national capital has triggered a major face-off, with the CJP alleging a crackdown on its Delhi Chalo march. Three CJP leaders, Abhijit Deepke, Saurabh Das and Ashutosh Ranka, were detained after arriving in Delhi. They were reportedly taken to separate locations in Delhi Gurugram and Dwarka. Deepke accused the authorities of dictatorship, alleging that Delhi police boarded his flight to detain him and other party leaders. CJP has vowed not to back down. In a statement, the party said its nationwide agitation would continue with or without its leaders, reiterating its demand for CEC Gyanesh Kumar to go. Police also detained protesters at several locations across Delhi, including Jantar Mantar, Connaught Place, as the march faced resistance from the police authorities. Send them out of the country, shame on you. These were the angry words that the passengers directed at the CJP leaders as they were being detained on board the flight. Have a look at this video.
8: भारत माता की जय.
9: शेम ऑन यू.
10: राजस्थान के एनएसए यूएन में जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो. आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड.
11: कचरा सा स्वच्छ भारत अभियान. 2 मिनट प्लीज.
0: YouTuber Dhruv Rathi has been detained ahead of CJP's Jantar Mantar Chalo call. Rathi, who lives in Germany, had arrived in India a few days ago. He had posted a video from India Gate calling for action against CC Gyanesh Kumar. Sources tell NDTV Rathi was detained from his residence in Sector 56, Gurugram. They've also issued a statement, CJP, condemning Rathi's detention. They've demanded his immediate and unconditional release. A scuffle broke out during a CJP protest in Delhi with multiple police personnel injured in the clash. Visuals from the spot show police trying to control the situation as the protest turned chaotic. Police personnel were seen in a scuffle with protesters while some CJP supporters were detained. Stone pelting was also reported during the protests at Connaught Place. Visuals show protesters hurling stones at police personnel with mass protesters also seen carrying sticks. Women police personnel were also among those injured. The incident has left several policemen hurt, with the visuals capturing the clash and the police response during the protest.
11: क्या हुआ उतने देर में और क्या सिचुएशन थी यहाँ पे?
12: बस एक बजे के करीब भीड़ आई है उधर से गुरुद्वारा काबगंज की तरफ से इम्तियाज खान मार्ग पर, और वो शाउटिंग कर रहे थे और गाली गलौज दे रहे थे, है ना, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज भी यूज कर रहे थे, जो हमने किसी तरह वो बैरिगेट पे चढ़ाई की उसको तोड़ने लग गए, है नी। फिर हमने जो है ना वारिस पे मैसेज किया, री इन्फोर्समेंट आई है, यहाँ कम से कम 15-20 मिनट संघर्ष चला है, रोड ब्लॉक करने की कोशिश की, आम पब्लिक को परेशानी हो रही थी लेकिन हमने वो नहीं होने दी।
11: सर, आप लोगों को चोट भी आई है इस पूरे ऑल्टरकेशन में?
12: यहाँ सीजी हुई है ना, ये उंगलियों पे चोट लगी है, बैरिगेट भी गिर गए थे हमारे, लेकिन उसके बाद ही हमने अपना पेशेंस नहीं खोया और उनको प्रॉपर तरीके से, इवन वो बैरिगेट पे चढ़ गए थे, उन्होंने वो हमें लाते मार रहे थे लेकिन हमने उनको उतारा कि भाई इनको कोई चोट ना लग जाए, ऐसी इंजरी ना लग जाए, है कि नहीं, जिससे इनकी लाइफ को कोई खतरा हो जाए।

0: एक नई दहलीज पर अनिश्चित अनसुलझी बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली। The sharpest global voices decode a world between orders. Dr. Swarnim Wagle, General David Petraeus, Swami Sarvapriyananda, Mike Walsh, Nicholas Butts, and the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, only on NDTV. After a smashing start, the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
1: Welcome to the second edition of the NDTV

0: The political face-off over the opposition's protests has intensified, with the Congress accusing the Modi government of attacking democracy and imposing an undeclared emergency. Rahul Gandhi has alleged vote theft and election theft, and also a crackdown on protesting youth. Priyanka Gandhi Vadra has accused the government of illegally detaining MPs and protesters and shutting down Delhi. BJP has hit back, accusing the opposition of trying to create anarchy and destabilize the country after electoral defeats. It says governance cannot be dictated from the streets and has challenged Rahul Gandhi over his allegation. Opposition is demanding accountability from the Election Commission, with INDIA bloc planning another protest march on Monday.
1: आज जो दिन भर से चला है और इसके पहले तीन दिन जो चला है, उससे दो बातें साफ साफ आई हैं. इंडियन डेमोक्रेसी हैज डिस्ट्रॉयड द क्वेस्ट फॉर एनार्की.
2: मोगैम्बो मोदी इज डिस्ट्रॉइंग इंडियाज डेमोक्रेसी.
3: जस्ट बाय कैरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन you do not respect the constitution. Your behavior and your actions speak for your respect for the constitution. Mr. Rahul Gandhi and his family and the members of his party from the president downwards need to apologize.
4: Is thane mein mushkil se 15-20 police wale bhi nahi hai aur jab bahar kai so log hain. मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, आपके थाने कम पड़ जाएंगे. इतने लोगों को कहां गिरफ्तार करोगे, आपके कहां आप लोगों को कंट्रोल करोगे. आप लोगों से पंगा लेना बंद करो, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा ले लो, वोट चोरी करना बंद करो. अगर आपने पंगा ले लिया, देश के युवा जिस दिन सड़कों पर उतर गए और उतर रहे हैं अब बहुत जबरदस्त तरीके से उतर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा.
5: आज पूरी तरह से ये कौन लोग हैं जिनको जनता ने नकार दिया, चाहे वो राहुल गांधी के इंडी गठबंधन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो और उनका सीजेपी हो. जनता ने जब इनको नकार दिया, लोकतंत्र ने इनको सजा दी, तो उस सजा को पचाने के, उससे सीखने के बजाय आपने इस देश को अस्थिर करने का मंसूबा बना दिया.
6: आई नेवर यूज्ड दिस प्रिजन वैन, इट इज फॉर द क्रिमिनल्स एंड द wanted people or unwanted people.
7: Criminal, like criminal.
6: Just criminals. With lock up everything. So, a protest, so with this protest, we have started dharna from here. Until unless our kidnapping time is end, we have started dharna.
0: And a protest planned in the national capital has triggered a major face-off, with the CJP alleging a crackdown on its Delhi Chalo march. Three CJP leaders, Abhijit Deepke, Saurav Das and Ashutosh Ranka, were detained after arriving in Delhi. They were reportedly taken to separate locations in Delhi, Gurugram and Dwarka. Deepke accused the authorities of dictatorship, alleging that Delhi police boarded his flight to detain him and other party leaders. CJP has vowed not to back down. In a statement, the party said its nationwide agitation would continue with or without its leaders, reiterating its demand for CEC Gyanesh Kumar to go. Police also detained protesters at several locations across Delhi, including Jantar Mantar, Connaught Place, as the march faced resistance from the police authorities. Send them out of the country, shame on you. These were the angry words that the passengers directed at the CJP leaders as they were being detained on board the flight. Have a look at this video.
8: भारत माता की जय.
9: शेम ऑन यू.
10: राजस्थान के एनएसए यूएनए जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो. आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड.
11: कचरा सा स्वच्छ भारत अभियान.
12: 2 मिनट प्लीज.
0: YouTuber Dhruv Rathi has been detained ahead of CJP's Jantar Mantar Chalo call. Rathi, who lives in Germany, had arrived in India a few days ago. He had posted a video from India Gate calling for action against CC Gyanesh Kumar. Sources tell NDTV Rathi was detained from his residence in Sector 56, Gurugram. They've also issued a statement, CJP, condemning Rathi's detention. They've demanded his immediate and unconditional release. A scuffle broke out during a CJP protest in Delhi with multiple police personnel injured in the clash. Visuals from the spot show police trying to control the situation as the protest turned chaotic. Police personnel were seen in a scuffle with protesters while some CJP supporters were detained. Stone pelting was also reported during the protests at Connaught Place. Visuals show protesters hurling stones at police personnel with mass protesters also seen carrying sticks. Women police personnel were also among those injured. The incident has left several policemen hurt, with the visuals capturing the clash and the police response during the protest.
7: क्या हुआ उतने देर में और क्या सिचुएशन थी यहाँ पे?
11: बस एक बजे के करीब भीड़ आई है उधर से गुरुद्वारा काबगंज की तरफ से इम्तियाज खान मार्ग पर, और वो शाउटिंग कर रहे थे और गाली गलौज दे रहे थे, है ना, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज भी यूज कर रहे थे, जो हमने किसी तरह वो बैरिगेट पे चढ़ाई की उसको तोड़ने लग गए, है नी। फिर हमने जो है ना वारिस पे मैसेज किया, रीइंफोर्समेंट आई है, यहाँ कम से कम 15-20 मिनट संघर्ष चला है, रोड ब्लॉक करने की कोशिश की, आम पब्लिक को परेशानी हो रही थी लेकिन हमने वो नहीं होने दी।
7: सर, आप लोगों को चोट भी आई है इस पूरे ऑल्टरकेशन में?
11: यहाँ सीजी हुई है ना, ये उंगलियों पे चोट लगी है, बैरिगेट भी गिर गए थे हमारे, है नी। लेकिन उसके बाद ही हमने अपना पेशेंस नहीं खोया और उनको प्रॉपर तरीके से, इवन वो बैरिगेट पे चढ़ गए थे, उन्होंने वो हमें लाते मार रहे थे लेकिन हमने उनको उतारा कि भाई इनको कोई चोट ना लग जाए, ऐसी इंजरी ना लग जाए, है कि नहीं, जिससे इनकी लाइफ को कोई खतरा हो जाए।
12: ने आपको हाथ मरोड़ा, क्या वो बाद में पकड़े गए या निकल गए थे वहाँ से?
13: सर, डिटेन तो किया है, अब मुझे ये नहीं पता था कि वो भीड़ में इतना नहीं पहचान सकती कौन सी लड़की थी वो, पर भीड़ में चोट लग गई थी मुझे उसी टाइम, उन्होंने हाथ वो गया था।
12: लगातार दिखने में आ रहा है कि जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, कितना मुश्किल और चैलेंजिंग हो रहा है इस दौरान ड्यूटी करना?
13: सर, ड्यूटी तो देखो हम अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं पाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे तब भी हमें अपनी ड्यूटी तो करनी है। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई हमें ऐसे हमारे साथ ऐसी बदसलूकी ना करें, क्योंकि हम भी अपना परिवार भी संभाल रहे हैं, अपने ड्यूटी भी कर रहे हैं, किसी को उल्टा भी नहीं बोला हमने प्रोटेस्ट में, यही कहा।

0: हमने उनके घर पे मुलाकात की और फिर आपने देखा किस तरह से वो वेलकम किया गया है। हम समझते हैं ये अच्छे संकेत हैं पूरे इंडिया गठबंधन के लिए, पूरे देश के लिए।
1: सीजेपी आर प्रोटेस्टिंग हियर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन चेन्नई, दे वर अरेस्टेड एंड व्हाट इज मिस्टर राहुल गांधी स्टेटमेंट, इज देयर इज द कांग्रेस पार्टी अगेंस्ट इट? When Mr. Rahul Gandhi was protesting in Delhi, these people said, oh, you should support Rahul Gandhi. You should not have narrow political considerations. You should think of the larger common good. Now, why they are not saying anything about this thing? The TVK government has had a crackdown on the police, on the protesters, and the RMPs were present there and ensured that those people were arrested, released. The persons arrested were released, and in the representation given to the president, they have mentioned every other state except the state of Tamil Nadu and Kerala.
2: Ayodhya has emerged as a political flashpoint in Uttar Pradesh with BJP's Ram Temple narrative and the opposition's electoral challenge back in focus. Ayodhya's symbolic importance has placed it at the center of BJP's Hindutva politics, making it a key battleground in the state's political contest. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has challenged Chief Minister Yogi Adityanath to contest from Ayodhya, questioning BJP's confidence in its political stronghold. Akhilesh has accused the BJP of treating Ayodhya's residents unfairly, bringing local grievances into political debate. Yogi Adityanath referred to Akhilesh's challenge to contest from Ayodhya and responded with a counter. He proposed that both leaders file their nominations from Ayodhya and test their political fortunes.
3: बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं, तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं। और दूध का दूध पानी का पानी करने का झूठा वादा करने वाले का पानी जनता उतार देगी इस बार।
4: आज वो अयोध्या एक बार फिर से राम राज्य के नए उदाहरण बनकर के त्रेता युग का स्मरण करा रही है, और मैं तो आपको ऑफर करता हूं, आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं। तय हो जाए, आप भी आइए और मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों? लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए, और उसके लिए मैं कह रहा हूं आइए आप भी।
2: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.
5: दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित, अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।

0: The political face-off over the opposition's protests has intensified, with the Congress accusing the Modi government of attacking democracy and imposing an undeclared emergency. Rahul Gandhi has alleged vote theft and election theft, and also a crackdown on protesting youth. Priyanka Gandhi Vadra has accused the government of illegally detaining MPs and protesters and shutting down Delhi. BJP has hit back, accusing the opposition of trying to create anarchy and destabilize the country after electoral defeats. It says governance cannot be dictated from the streets and has challenged Rahul Gandhi over his allegation. Opposition is demanding accountability from the Election Commission, with INDIA bloc planning another protest march on Monday.
1: आज जो दिनभर से चला है और इसके पहले तीन दिन जो चला है, उससे दो बातें साफ साफ आई हैं. इंडियन डेमोक्रेसी हैज डिस्ट्रॉयड द क्वेस्ट फॉर एनार्की.
2: मोगैम्बो मोदी इज डिस्ट्रॉइंग इंडियाज डेमोक्रेसी.
3: जस्ट बाय कैरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन you do not respect the constitution. Your behavior and your actions speak for your respect for the constitution. Mr. Rahul Gandhi and his family and the members of his party from the president downwards need to apologize.
4: Is thane mein mushkil se 15-20 police wale bhi nahi hai aur jab bahar kai so log hain. मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, आपके थाने कम पड़ जाएंगे. इतने लोगों को कहां गिरफ्तार करोगे, आपके कहां आप लोगों को कंट्रोल करोगे. आप लोगों से पंगा लेना बंद करो, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा ले लो, वोट चोरी करना बंद करो. अगर आपने पंगा ले लिया, देश के युवा जिस दिन सड़कों पर उतर गए और उतर रहे हैं अब बहुत जबरदस्त तरीके से उतर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा.
5: आज पूरी तरह से ये कौन लोग हैं जिनको जनता ने नकार दिया, चाहे वो राहुल गांधी के इंडी गठबंधन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो और उनका सीजेपी हो. जनता ने जब इनको नकार दिया, लोकतंत्र ने इनको सजा दी, तो उस सजा को पचाने के, उससे सीखने के बजाय आपने इस देश को अस्थिर करने का मंसूबा बना दिया.
6: आई नेवर यूज्ड दिस प्रिजन वैन, इट इज फॉर द क्रिमिनल्स एंड द wanted people or unwanted people.
7: Criminal, like criminal.
6: Just criminals. With lock up everything. So, a protest, so with this protest, we have started dharna from here. Until unless our kidnapping time is in, we have started dharna.
0: And a protest plan in the national capital has triggered a major face-off, with the CJP alleging a crackdown on its Delhi Chalo march. Three CJP leaders, Abhijit Deepke, Saurav Das and Ashutosh Ranka, were detained after arriving in Delhi. They were reportedly taken to separate locations in Delhi, Gurugram and Dwarka. Deepke accused the authorities of dictatorship, alleging that Delhi police boarded his flight to detain him and other party leaders. CJP has vowed not to back down. In a statement, the party said its nationwide agitation would continue with or without its leaders, reiterating its demand for CEC Gyanesh Kumar to go. Police also detained protesters at several locations across Delhi, including Jantar Mantar, Connaught Place, as the march faced resistance from the police authorities. Send them out of the country, shame on you. These were the angry words that the passengers directed at the CJP leaders as they were being detained on board the flight. Have a look at this video.
8: भारत माता की जय.
9: शेम ऑन यू.
10: राजस्थान के एनएसए यूएनए जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो. आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड.
11: कचरा सा स्वच्छ भारत अभियान. 2 मिनट प्लीज.
0: YouTuber Dhruv Rathi has been detained ahead of CJP's Jantar Mantar Chalo call. Rathi, who lives in Germany, had arrived in India a few days ago. He had posted a video from India Gate calling for action against CC Gyanesh Kumar. Sources tell NDTV Rathi was detained from his residence in Sector 56, Gurugram. They've also issued a statement, CJP, condemning Rathi's detention. They've demanded his immediate and unconditional release. A scuffle broke out during a CJP protest in Delhi with multiple police personnel injured in the clash. Visuals from the spot show police trying to control the situation as the protest turned chaotic. Police personnel were seen in a scuffle with protesters while some CJP supporters were detained. Stone pelting was also reported during the protests at Connaught Place. Visuals show protesters hurling stones at police personnel with mass protesters also seen carrying sticks. Women police personnel were also among those injured. The incident has left several policemen hurt, with the visuals capturing the clash and the police response during the protest.
7: क्या हुआ उतने देर में और क्या सिचुएशन थी यहाँ पे?
11: बस एक बजे के करीब भीड़ आई है उधर से गुरुद्वारा काबगंज की तरफ से इम्तियाज खान मार्ग पर, और वो शाउटिंग कर रहे थे और गाली गलौज दे रहे थे, है ना, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज भी यूज कर रहे थे, जो हमने किसी तरह वो बैरिगेट पे चढ़ाई की उसको तोड़ने लग गए, है नी। फिर हमने जो है ना वारिस पे मैसेज किया, रीइन्फोर्समेंट आई है, यहाँ कम से कम 15-20 मिनट संघर्ष चला है, रोड ब्लॉक करने की कोशिश की, आम पब्लिक को परेशानी हो रही थी लेकिन हमने वो नहीं होने दी।
7: सर, आप लोगों को चोट भी आई है इस पूरे अल्टरकेशन में?
11: यहाँ सीजी हुई है ना, ये उंगलियों पे चोट लगी है, बैरिगेट भी गिर गए थे हमारे, है नी। लेकिन उसके बाद ही हमने अपना पेशेंस नहीं खोया और उनको प्रॉपर तरीके से, इवन वो बैरिगेट पे चढ़ गए थे, उन्होंने वो हमें लाते मार रहे थे लेकिन हमने उनको उतारा कि भाई इनको कोई चोट ना लग जाए, ऐसी इंजरी ना लग जाए, है कि नहीं, जिससे इनकी लाइफ को कोई खतरा हो जाए।
12: आपको हाथ मरोड़ा, क्या वो बाद में पकड़े गए या निकल गए थे वहाँ से?
13: सर, डिटेन तो किया है, अब मुझे ये नहीं पता था कि वो भीड़ में इतना नहीं पहचान सकती कौन सी लड़की थी वो, पर भीड़ में चोट लग गई थी मुझे उसी टाइम, उन्होंने हाथ वो गया था।
12: लगातार दिखने में आ रहा है कि जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, कितना मुश्किल और चैलेंजिंग हो रहा है इस दौरान ड्यूटी करना?
13: सर, ड्यूटी तो देखो हम अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं पाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे तब भी हमें अपनी ड्यूटी तो करनी है। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई हमें ऐसे हमारे साथ ऐसी बदसलूकी ना करें, क्योंकि हम भी अपना परिवार भी संभाल रहे हैं, अपने ड्यूटी भी कर रहे हैं, किसी को उल्टा भी नहीं बोला हमने प्रोटेस्ट में, यही कहा कि भी यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखें।
14: अकेला था, मैं एक ही आदमी को रोक रहा था लेकिन उसने मेरे को धक्का दे दिया, मेरे ये हाथ पे चोट लगी और कमर पे लगी हुई है, हमारी यहाँ जरूरत है इसलिए मैं अभी हॉस्पिटल नहीं गया, लेकिन अब मैं
15: जाने तब तक डटे हुए जब तक, हालांकि चोट खा के भी आप डटे हैं, अब
14: बिल्कुल डटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमारी जरूरत है।
0: India has entered the Fly Dubai investigation. The NIA has filed a terror case as Captain Smith recovers and Hamami's Australia links come under scrutiny. NIA has stepped in and will now examine whether Hamami acted alone or as part of a wider module and trace any international conspiracy behind the attack. The National Probe Agency has invoked sections under Anti-Hijacking Act and UAPA. Investigators are now piecing together Hamami's entire trail to establish whether he acted alone and how the alleged plot escaped multiple security checks. This is now a rare cross-border investigation combining criminal counter-terror aviation safety tracks across countries connected to the flight. Some latest news coming in. New images show

0: Key battleground in the state's political contest. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has challenged Chief Minister Yogi Adityanath to contest from Ayodhya, questioning BJP's confidence in its political stronghold. Akhilesh has accused the BJP of treating Ayodhya's residents unfairly, bringing local grievances into political debate. Yogi Adityanath referred to Akhilesh's challenge to contest from Ayodhya and responded with a counter. He proposed that both leaders file their nominations from Ayodhya and test their political fortunes.
1: बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं, तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं और दूध का दूध पानी का पानी करने का झूठा वादा करने वाले का पानी जनता उतार देगी इस बार।
2: आज वो अयोध्या एक बार फिर से राम राज्य के नए उदाहरण बनकर के त्रेता युग का स्मरण करा रही है और मैं तो आपको ऑफर करता हूं, आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं। तय हो जाए, आप भी आइए और मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों? लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए और उसके लिए मैं कह रहा हूं आइए आप भी।
0: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.
3: दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित, अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।

0: राजस्थान के एनएसए यूएन में जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो. आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड.
1: कचरा सा स्वच्छ भारत अभियान.
0: दो मिनट प्लीज.
2: YouTuber Dhruv Rathi has been detained ahead of CJP's Jantar Mantar Chalo call. Rathi, who lives in Germany, had arrived in India a few days ago. He had posted a video from India Gate calling for action against CC Gyanesh Kumar. Sources tell NDTV Rathi was detained from his residence in Sector 56, Gurugram. They've also issued a statement, CJP, condemning Rathi's detention. They've demanded his immediate and unconditional release. A scuffle broke out during a CJP protest in Delhi with multiple police personnel injured in the clash. Visuals from the spot show police trying to control the situation as the protest turned chaotic. Police personnel were seen in a scuffle with protesters while some CJP supporters were detained. Stone pelting was also reported during the protests at Connaught Place. Visuals show protesters hurling stones at police personnel with mass protesters also seen carrying sticks. Women police personnel were also among those injured. The incident has left several policemen hurt, with the visuals capturing the clash and the police response during the protest.
3: क्या हुआ उतने देर में और क्या सिचुएशन थी यहाँ पे?
4: बस एक बजे के करीब भीड़ आई है उधर से गुरुद्वारा काबगंज की तरफ से इम्तियाज खान मार्ग पर, और वो शाउटिंग कर रहे थे और गाली गलौज दे रहे थे, है ना, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज भी यूज कर रहे थे. जो हमने किसी तरह वो बैरिगेट पे चढ़ाई की, उसको तोड़ने लग गए, है नी. फिर हमने जो है ना वारिश पे मैसेज किया, री इन्फोर्समेंट आई है यहाँ, कम से कम 15-20 मिनट संघर्ष चला है, रोड ब्लॉक करने की कोशिश की. आम पब्लिक को परेशानी हो रही थी लेकिन हमने वो नहीं होने दी.
3: सर, आप लोगों को चोट भी आई है इस पूरे अल्टरकेशन में?
4: उंगलियां सूजी हुई है ना, ये उंगलियों पे चोट लगी है, बैरिगेट भी गिर गए थे हमारे, है नी. लेकिन उसके बाद ही हमने अपना पेशेंस नहीं खोया और उनको प्रॉपर तरीके से, इवन वो बैरिगेट पे चढ़ गए थे, उन्होंने वो हमें लाते मार रहे थे लेकिन हमने उनको उतारा कि भाई इनको कोई चोट ना लग जाए, ऐसी इंजरी ना लग जाए, है कि नहीं, जिससे इनकी लाइफ को कोई खतरा हो जाए.
5: ने आपको हाथ मरोड़ा, क्या वो बाद में पकड़े गए या निकल गए थे वहाँ?
6: सर, डिटेन तो किया है. अब मुझे ये नहीं पता था कि भाई वो भीड़ में इतना नहीं पहचान सकती कौन सी लड़की थी वो, पर भीड़ में चोट लग गई थी मुझे उसी टाइम, उन्होंने हाथ वो गया था.
5: लगातार दिखने में आ रहा है कि जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, कितना मुश्किल और चैलेंजिंग हो रहा है इस दौरान ड्यूटी करना?
6: सर, ड्यूटी तो देखो हम अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं पाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे तब भी हमें अपनी ड्यूटी तो करनी है. लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई हमें ऐसे हमारे साथ ऐसी बदसलूकी ना करें, क्योंकि हम भी अपना परिवार भी संभाल रहे हैं, अपने ड्यूटी भी कर रहे हैं. किसी को उल्टा भी नहीं बोला हमने प्रोटेस्ट में, यही कहा कि भी यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखें.
7: अकेला था, मैं एक ही आदमी को रोक रहा था लेकिन उसने मेरे को धक्का दिया. मेरे ये हाथ पे चोट लगी और कमर पे लगी हुई है, हमारी यहाँ जरूरत है इसलिए मैं अभी हॉस्पिटल नहीं गया. लेकिन अब मैं
8: जाने तब तक डटे हुए हैं जब तक, हालांकि चोट खा के भी आप डटे हैं? अब
7: बिल्कुल डटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमारी जरूरत है.
2: India has entered the Fly Dubai investigation. The NIA has filed a terror case as Captain Smith recovers and Hamami's Australia links come under scrutiny. NIA has stepped in and will now examine whether Hamami acted alone or as part of a wider module and trace any international conspiracy behind the attack. The National Probe Agency has invoked sections under Anti-Hijacking Act and UAPA. Investigators are now piecing together Hamami's entire trail to establish whether he acted alone and how the alleged plot escaped multiple security checks. This is now a rare cross-border investigation combining criminal counter-terror aviation safety tracks across countries connected to the flight. Some latest news coming in. New images show Captain Smith in hospital. He's seen smiling with the head still bandaged. Captain Smith seen reading Herzog's letter. Israel President salutes Smith's courage. Israel President has thanked Smith for averting a major tragedy. That's the word coming in. The new images on your screen right now. We'll

0: The political face-off over the opposition's protests has intensified, with the Congress accusing the Modi government of attacking democracy and imposing an undeclared emergency. Rahul Gandhi has alleged vote theft and election theft, and also a crackdown on protesting youth. Priyanka Gandhi Vadra has accused the government of illegally detaining MPs and protesters and shutting down Delhi. BJP has hit back, accusing the opposition of trying to create anarchy and destabilize the country after electoral defeats. It says governance cannot be dictated from the streets and has challenged Rahul Gandhi over his allegation. Opposition is demanding accountability from the Election Commission, with INDIA bloc planning another protest march on Monday.
1: आज जो दिन भर से चला है और इसके पहले तीन दिन जो चला है, उससे दो बातें साफ साफ आई हैं. इंडियन डेमोक्रेसी हैज डिस्ट्रॉयड द क्वेस्ट फॉर एनार्की.
2: मोगैम्बो मोदी इज डिस्ट्रॉइंग इंडियाज डेमोक्रेसी.
3: जस्ट बाय कैरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यू डू नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. Your behavior and your actions speak for your respect for the Constitution. Mr. Rahul Gandhi and his family and the members of his party, from the president downwards, need to apologize.
4: इस थाने में मुश्किल से 15-20 पुलिस वाले भी नहीं है और बाहर कई सौ लोग हैं. मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, आपके थाने कम पड़ जाएंगे. इतने लोगों को कहाँ गिरफ्तार करोगे, आपके कहाँ आप लोगों को कंट्रोल करोगे. आप लोगों से पंगा लेना बंद करो, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा ले लो, वोट चोरी करना बंद करो. अगर आपने पंगा ले लिया, देश के युवा जिस दिन सड़कों पे उतर गए और उतर रहे हैं, अब बहुत जबरदस्त तरीके से उतर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा.
5: आज पूरी तरह से ये कौन लोग हैं जिनको जनता ने नकार दिया, चाहे वो राहुल गांधी के इंडी गठबंधन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो और उनका सीजेपी हो. जनता ने जब इनको नकार दिया, लोकतंत्र ने इनको सजा दी, तो उस सजा को पचाने के, उससे सीखने के बजाय आपने इस देश को अस्थिर करने का मंसूबा बना दिया.
6: आई नेवर यूज्ड दिस प्रिजन वैन, इट इज फॉर द क्रिमिनल्स एंड द वांटेड पीपल और अनवांटेड पीपल.
7: Criminal, like criminal.
6: Just criminals. We lock up everything. So, a protest. So, with this protest, we have started dharna from here. Until unless our kidnapping time is end.
0: And a protest planned in the national capital has triggered a major face-off, with the CJP alleging a crackdown on its Delhi Chalo march. Three CJP leaders, Abhijit Deepke, Saurav Das and Ashutosh Ranka, were detained after arriving in Delhi. They were reportedly taken to separate locations in Delhi, Gurugram and Dwarka. Deepke accused the authorities of dictatorship, alleging that Delhi police boarded his flight to detain him and other party leaders. CJP has vowed not to back down. In a statement, the party said its nationwide agitation would continue with or without its leaders, reiterating its demand for CEC Gyanesh Kumar to go. Police also detained protesters at several locations across Delhi, including Jantar Mantar, Connaught Place, as the march faced resistance from the police authorities. Send them out of the country, shame on you. These were the angry words that the passengers directed at the CJP leaders as they were being detained on board the flight. Have a look at this video.
8: भारत माता की जय.
9: शेम ऑन यू.
10: राजस्थान के एनएसए यूएनआई जोर लगाने लगा.

0: लगा दूं, जोश लगाने ही लगा दूं, आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड।
1: कचरा सा स्वच्छ भारत अभियान,
0: दो मिनट प्लीज।
2: YouTuber Dhruv Rathi has been detained ahead of CJP's Jantar Mantar Chalo call. Rathi, who lives in Germany, had arrived in India a few days ago. He had posted a video from India Gate calling for action against CC Gyanesh Kumar. Sources tell NDTV Rathi was detained from his residence in Sector 56, Gurugram. They've also issued a statement, CJP, condemning Rathi's detention. They've demanded his immediate and unconditional release. A scuffle broke out during a CJP protest in Delhi with multiple police personnel injured in the clash. Visuals from the spot show police trying to control the situation as the protest turned chaotic. Police personnel were seen in a scuffle with protesters while some CJP supporters were detained. Stone pelting was also reported during the protests at Connaught Place. Visuals show protesters hurling stones at police personnel with mass protesters also seen carrying sticks. Women police personnel were also among those injured. The incident has left several policemen hurt, with the visuals capturing the clash and the police response during the protest.
3: क्या हुआ उतने देर में और क्या सिचुएशन थी यहाँ पे?
4: बस एक बजे के करीब भीड़ आई है उधर से गुरुद्वारा काबगंज की तरफ से इम्तियाज खान मार्ग पर, और वो शाउटिंग कर रहे थे और गाली गलौज दे रहे थे, है ना, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज भी यूज कर रहे थे, जो हमने किसी तरह वो बैरिगेट पे चढ़ाई की उसको तोड़ने लग गए, है नी। फिर हमने जो है ना वारिस पे मैसेज किया, रीइन्फोर्समेंट आई है, यहाँ कम से कम 15-20 मिनट संघर्ष चला है, रोड ब्लॉक करने की कोशिश की, आम पब्लिक को परेशानी हो रही थी लेकिन हमने वो नहीं होने दी।
3: सर, आप लोगों को चोट भी आई है इस पूरे ऑल्टरकेशन में?
4: यहाँ सीजी हुई है ना, ये उंगलियों पे चोट लगी है, बैरिगेट भी गिर गए थे हमारे, है नी। लेकिन उसके बाद ही हमने अपना पेशेंस नहीं खोया और उनको प्रॉपर तरीके से, इवन वो बैरिगेट पे चढ़ गए थे, उन्होंने वो हमें लाते मार रहे थे लेकिन हमने उनको उतारा कि भाई इनको कोई चोट ना लग जाए, ऐसी इंजरी ना लग जाए, है कि नहीं, जिससे इनकी लाइफ को कोई खतरा हो जाए।
5: ने आपको हाथ मरोड़ा, क्या वो बाद में पकड़े गए या निकल गए थे वहाँ से?
6: सर, डिटेन तो किया है, अब मुझे ये नहीं पता था कि वो भीड़ में इतना नहीं पहचान सकती कौन सी लड़की थी वो, पर भीड़ में चोट लग गई थी मुझे उसी टाइम, उन्होंने हाथ वो गया था।
5: लगातार दिखने में आ रहा है कि जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, कितना मुश्किल और चैलेंजिंग हो रहा है इस दौरान ड्यूटी करना?
6: सर, ड्यूटी तो देखो हम अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं पाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे तब भी हमें अपनी ड्यूटी तो करनी है। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई हमें ऐसे हमारे साथ ऐसी बदसलूकी ना करें, क्योंकि हम भी अपना परिवार भी संभाल रहे हैं, अपने ड्यूटी भी कर रहे हैं, किसी को उल्टा भी नहीं बोला हमने प्रोटेस्ट में, यही कहा कि भी यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखें।
7: अकेला था, मैं एक ही आदमी को रोक रहा था लेकिन उसने मेरे को धक्का दे दिया, मेरे ये हाथ पे चोट लगी और कमर पे लगी हुई है, हमारी यहाँ जरूरत है इसलिए मैं अभी हॉस्पिटल नहीं गया, लेकिन अब मैं
8: जाने तब तक डटे हुए हैं जब तक, हालांकि चोट खा के भी आप डटे हुए हैं।
7: अब बिल्कुल डटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमारी जरूरत है।
2: India has entered the Fly Dubai investigation. The NIA has filed a terror case as Captain Smith recovers and Hamami's Australia links come under scrutiny. NIA has stepped in and will now examine whether Hamami acted alone or as part of a wider module and trace any international conspiracy behind the attack. The National Probe Agency has invoked sections under Anti-Hijacking Act and UAPA. Investigators are now piecing together Hamami's entire trail to establish whether he acted alone and how the alleged plot escaped multiple security checks. This is now a rare cross-border investigation combining criminal counter-terror aviation safety tracks across countries connected to the flight. Some latest news coming in. New images show Captain Smith in hospital. He's seen smiling with the head still bandaged. Captain Smith seen reading Herzog's letter. Israel President salutes Smith's courage. Israel President has thanked Smith for averting a major tragedy. That's the word coming in. The new images on your screen right now. We'll try and connect with my colleague as well to get more perspective on the story. But from across the world, wishes have been coming in. As far as Captain Smith is concerned, the entire world has been wishing him a speedy recovery. He also had a call with Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel, Prime Minister of India.

0: खाएं और दूध का दूध पानी का पानी करने का झूठा वादा करने वाले का पानी जनता उतार देगी इस बार।
1: आज वो अयोध्या एक बार फिर से राम राज्य के नए उदाहरण बनकर के त्रेता युग का स्मरण करा रही है और मैं तो आपको ऑफर करता हूं, आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं, तय हो जाए। आप भी आइए और मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों, लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए और उसके लिए मैं कह रहा हूं आइए आप भी।
2: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.
3: दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित, अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।